0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए

0: नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथसञ्चलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये, वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीयव्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
2: ஆகாஷவாணி நேரம் காலை 7 மணி.

0: தொடர்வது ஆட்சவிரை செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல்.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। हर अनुभव आपको कुछ नया और बेहतर सिखाता है।
1: धीरे चलो, धीरे चलो।
0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
2: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड लिसनर्स, just an idea that I would like to share with our listeners. You might be busy with everyday chores and life may get hard sometimes. You may feel disheartened, but always remember, the sun will always shine bright upon us no matter what, right? So with that, let's begin our program Aaj Savere. We have latest in national and international news, Metro City updates. Today, it's 29th of June 2026. We'll explore today's history in great detail. And we'll also pay our tributes the ending segment of the program. So stay tuned with us till the very end. Let's start with the headlines.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
3: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: In Gujarat, the 4th Vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh Mandaviya, alongside key state ministers and global diplomats will take part in the 2-day conference, which aims to boost industrial development in central Gujarat region. We have a report from our correspondent.
4: The 2-day summit will host over 30 seminars with 151 experts and delegates from partner countries including Japan, Singapore, UAE, Ukraine and Rwanda. Focused on central Gujarat's economic growth, the event will focus on future-ready sectors like semiconductors, logistics, green hydrogen, quantum technology, AI in agriculture, aerospace and defense. A grand exhibition with over 150 stalls showcasing regional MSMEs, advanced tech startups and major enterprises like Amul and GFSC will be one of the main highlights of the event. Aparna Khut, Akashwani News, Vadodara.
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे का जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
2: In our bilingual live phone-in program Public Speak at 9:30 p.m. tonight, we will bring an insightful discussion on growing small businesses and opportunities for entrepreneurs with Dr. Rajneesh, Additional Secretary and Development Commissioner, Ministry of MSME, Government of India. During the program, listeners can ask questions on the subject. So to participate, listen intently. Simply dial the telephone numbers 011-233-10481. Alternatively, you can dial 23717117 9:30 p.m. onwards tonight.
0: अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने

0: पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जल डमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
0: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मुकाबले में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच कोई भी गोल नहीं हुआ और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। ये FIH हॉकी प्रो लीग में हॉकी विश्व कप से पहले भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का।
2: राइट, फर्स्ट लेट्स बिगिन विद चेन्नई। द डेथ टोल इन द अमोनिया गैस लीक राइजेस टू 16 टुडे। द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट संडे एट अ सी फूड प्रोसेसिंग कंपनी एट तिरुवल्लूर नियर चेन्नई। द लेटेस्ट वाज अ गेस्ट वर्कर कविता जुआंगा फ्रॉम ओडिशा। द गैस लीक आफ्टर 83 वर्कर्स सो फार 41 हैव बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स व्हाइल 26 रिमेन अंडर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल ऑब्जर्वेशन। Among them, one patient is on ventilator support, 9 are on oxygen support through nasal support, and 16 are in stable condition, and of the 26 patients, 25 are women. Another update from Chennai.
0: Ji.
2: The Tamil Nadu police arrested a smuggler in narcotics, gold jewellery, vehicles and other incriminating materials. They were seized. Three people were arrested on 28th of June for transporting narcotics on 20th June. Police seized 26.35 grams of methamphetamine, 2 LSD stamps, 5.59 grams of MDMA tablets, 15 ATM cards, 3 mobiles and the car used in the offence.
0: अब दिल्ली की खबर।
2: राइट,
0: दिल्ली विधानसभा में यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित छात्र संसद में दिल्ली के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को करीब से समझने का अनुभव मिला। दिल्ली विधानसभा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर, संसदीय परंपराओं को समझकर और विधानसभा परिसर का दौरा करके छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक मूल्यों और देश को मजबूत बनाने में नागरिकों की अहम भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1 जुलाई को दिल्ली सरकार में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हुआ है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
2: वेल, वी विल नाउ हेड टू बेंगलुरु मनोज
0: जी।
2: First update. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has declared crackdown on outlets selling tobacco laced with banned intoxicating substances. He was addressing the audience at the Nasha Mukt Bharat Abhiyan launched as part of 31st Foundation Day of Rajiv Gandhi University of Health Sciences in Bengaluru yesterday. He noted that alarming reports are received by him that certain gutka and pan masala products sold in the state are mixed with drug-like substances. He asserted that his government will not hesitate to slap a blanket ban on the sale of all types of gutka, pan masalas and chewing tobacco across the state if narcotics are mixed with them. He opined that a drug-free Bharat is impossible without impenetrable borders. He opined that from where he alleged the drugs are smuggled in. He cautioned students not to fall prey to the drugs as it may jeopardize their dreams of becoming doctors. He called upon them to shun peer pressure and learn to say no to drugs. He advised that for momentary pleasure, one can destroy their future. All right. Another update from Bengaluru.
0: GG.
2: In the DACSS Maharaja Trophy T20 tournament being held in Hubballi, coastal Bengaluru registered an emphatic 8-wicket victory over Shivamoga Yodhas yesterday. And due to rain, the match was reduced to 17 overs a side. It was T20, you see. Battling, batting first, Shivamoga Yodhas managed

0: pitched only 113 runs for the loss of 8 in their allotted 17 overs. Coastal Mengaluru reached the target with comfort in just 12.4 overs, losing just 2 wickets. And this win helped Mengaluru take the second position in the points table below Bengaluru Blasters, who continue to dominate at the pitch.
1: अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को पालघर जिले के तारापुर में आदिवासी समुदायों में वन अधिकारों

0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को पालघर जिले के तारापुर में आदिवासी समुदायों में वन अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आपली जमीन आपल्या हक नामक कॉमिक का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री फडणवीस ने कहा कि कॉमिक का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने परिवारों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार सुरक्षित करने और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में सहायता करके विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर और कानूनी रिकॉर्ड को अद्यतन करके आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने उचित अधिकारों तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री गणेश नाइक और नितेश राणे, सांसद डॉक्टर हेमंत सवारा, विधायक राजेंद्र गावित और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र की एक और खबर, महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अनिवासी भारतीय मामलों और जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गावड़े ने कल कहा कि महाराष्ट्र में दंत चिकित्सा सेवाओं, दंत पर्यटन अनुसंधान तथा विकास और दंत उपकरण निर्माण के लिए वैश्विक निवेश केंद्र बनने की अपार क्षमता है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ओरल स्वास्थ्य देखभाल पर एक विशेष सत्र और गोलमेज सम्मेलन में श्री गावड़े ने कहा कि राज्य सरकार ओरल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करते हुए इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र को ओरल स्वास्थ्य देखभाल और दंत पर्यटन के लिए एक अग्रणी गंतव्य बनाने के अवसरों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा तथा असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। राज्य सरकार 1 जुलाई को नेताजी इंडोर स्टेडियम में अन्नपूर्णा योजना के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार लगभग 12,000 महिला लाभार्थी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगी। उसी दिन अन्नपूर्णा योजना के तहत धनराशि राज्य भर में 1,05,00,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। कुल लाभार्थियों में से 12,000 लाभार्थी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां मुख्यमंत्री स्वयं कुछ लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना के चेक सौंपेंगे। और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
1: सो मनोज, आई विल बी बिगिनिंग विद चेन्नई। सो चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius in Hyderabad. So this was all about the weather.
0: Ji. और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 29 जून है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
1: Well, yes. Today it's 29th of June. We are taking you way back in time. In the year 1613 first, London's famous Globe Theatre, associated with William Shakespeare, was destroyed by fire during a performance of Henry VIII.
0: 1855 में आज ही के दिन

0: ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली समाचार पत्रों में से एक द डेली टेलीग्राफ का लंदन से पहली बार प्रकाशन हुआ।
1: In 1880, France annexed Tahiti, bringing the Pacific island under French colonial rule. In 1956, Federal Aid Highway Act of 1956 was signed by Dwight D. Eisenhower, launching the U.S. Interstate Highway System.
0: 1974 में आज ही के दिन इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की राष्ट्रपति का पदभार संभालकर दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2005 में आज ही के दिन भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ।
1: In the year 2007, launch of the first iPhone took place in the United States, revolutionizing the smartphone industry.
0: 2007 में आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप श्रृंखला के दूसरे मैच के दौरान 15,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। और 2014 में आज ही के दिन साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती।
1: In 2020, the government of India banned 59 Chinese mobile apps. This includes TikTok, citing national security concerns.
0: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है माइकल मधुसूदन दत्त की। उनका जन्म 25 जनवरी 1824 को जसोर अविभाजित भारत में हुआ था। वे बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और नाटककार थे। उनका हिंदू नाम मधुसूदन दत्त था, किंतु ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने और एक ईसाई युवती से विवाह के बाद उनका नाम माइकल मधुसूदन दत्त हो गया। माइकल मधुसूदन दत्त बंगाल में अपनी पीढ़ी के उन युवकों के प्रतिनिधि थे जो तत्कालीन हिंदू समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से क्षुब्ध थे। वे अतिशय भावुक व्यक्ति थे। ये भावुकता उनकी आरंभ की अंग्रेजी रचनाओं तथा बाद की बांग्ला रचनाओं में भी व्याप्त हुई। आपकी मुख्य रचनाएं शर्मिष्ठा, पद्मावती, कृष्ण कुमारी, तिलोत्तमा, मेघनाथ, वध काव्य, वज्रांगना, वीरांगना आदि हैं। आइए सुनते हैं उनका लिखा नाटक मेघनाथ वध काव्य का के मंचन का कुछ अंश।
2: অতুল জগতে দোহে বামা কুলোত্তমা প্রমিলা পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলি শয়ন মন্দির হতে বাহিরিলা দোহে প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে গাইল অলি পরিমল আসে গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চসারে বাজের রাক্ষস বাদ্য
1: Well, right, Michael Madhusudan Dutt, the rebel who wrote poetry like thunder and lived life like a storm. Well, Bengal's first true literary rock star, the man who broke rules, broke traditions, and rebuilt Bengali literature from the ashes. From sonnets to epics, from heartbreak to heroism, he turned every line into history.
0: Jee. आज पुण्यतिथि है दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की। उनका जन्म 31 जुलाई 1907 को गोवा में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। गणित के अतिरिक्त भारत के इतिहास और संस्कृति में भी इनका अतुलनीय योगदान रहा है। दामोदर धर्मानंद जी ने 16 वर्षों तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अपनी सेवाएं दी थी। इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
1: Today listeners, we are also remembering Ashutosh Mukherjee. And well, we are paying heartfelt tribute to him. His immense contributions to higher education, intellectual awakening, and the advancement of Indian scholarship continues to inspire generations. His legacy remains deeply connected with the spirit of academic excellence and cultural renaissance in Bengal and beyond. I was telling you about Sir Ashutosh Mukherjee.
0: आज पुण्यतिथि है केजी सुब्रमण्यम की। उनका जन्म 15 फरवरी 1924 को केरल में हुआ था। वे भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे। वे भारतीय आधुनिक कला के प्रणेताओं में शामिल रहे थे। वर्ष 2012 में केजी सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, 2006 में पद्म भूषण तथा 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेंबरिंग Singer and actress Rosemary Clooney. She

0: आज पुण्यतिथि है मेहता लज्जा राम शर्मा की। उनका जन्म 1863 को हुआ था। वे हिंदी भाषा के पत्रकार और साहित्यकार थे। उन्होंने 23 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 13 उपन्यास हैं। पाठकों की दृष्टि में वे एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। लज्जा राम मेहता ने हिंदू को न केवल लोकप्रिय बनाया, बल्कि उसमें मध्यम वर्ग की समस्याओं का चित्रण भी किया।
1: Well, today, listeners, we're also remembering Prasanth Chandra Mahalanobis, pioneering statistician, scientist and planner who made a lasting contribution to India. Well, he founded the Indian Statistical Institute and introduced the Mahalanobis distance. This is still widely used in statistics, data science and machine learning. And National Statistics Day, it is observed to create awareness and mark the birth anniversary of Prasanth Chandra Mahalanobis, one of the country's greatest statisticians and widely regarded as the father of Indian statistics. He also played a key role in India's economic planning after independence. And well, we are also remembering his vision, his dedication and remarkable contributions. His legacy continues to inspire statisticians, researchers and students also, Manoj. And he is widely remembered as the father of Indian statistics, I told you. And this day, National Statistics Day, it is observed to create awareness about the importance of statistics in policy making, in governance, economic planning and national development as well. So in today's data-driven world, statistics helps governments make informed decisions and monitor development, improve public services as well, and address social and economic challenges effectively. And all the credit goes to this pioneer, Prasanth Chandra Mahalanobis.
0: Ji, aaj janmdin hai Kartik Raja ka. Ve ek Bharatiya sangeetkar aur parshv gayak hain. वे मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। साथ ही 2001 की जैकी श्रॉफ मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म ग्रहण के अलावा कुछ हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया है। उन्होंने फिल्म पांडियन से एक फिल्म संगीतकार के तौर पर शुरुआत की और वे मुख्य रूप से 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म ग्रहण का एक गीत।

0: आज जयंती है शैल चतुर्वेदी की। उनका जन्म 29 जून 1936 को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारत के एक हिंदी कवि, व्यंग्यकार, हास्य कलाकार, गीतकार और अभिनेता थे। वे 70 और 80 के दशक में अपने राजनीतिक व्यंग्य के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरीज में चरित्र अभिनेता के तौर पर काम किया। आइए सुनते हैं उनकी एक कविता और उनके द्वारा लिखा गया भजन।
1: बाजार का ये हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। गाय कहेगी पानी पी रही हूँ तो पानी ही दूंगी। दूध वाला मेरे प्राण ले रहा है, मैं तुम्हारे लूंगी।

आज जयंती है राशिपुरम सुब्रमण्यम अय्यर मनोहर की. उनका जन्म 29 जून 1925 को नमक्कल में हुआ था. वे एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हीरो, विलेन और कॉमेडी किरदारों जैसी कई तरह की भूमिकाएं निभाई. उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. आइए सुनते हैं उनका एक गीत.

0: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के

0: 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331048101।

0: 01132317116 01132317116 और 01132314444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honor. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை சேலம் ஆர் ஸ்ரீராம் அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். பி விட்டல் ரங்கன் அவர்கள் வயலின், கல்லிடைக்குறிச்சி எஸ் சிவகுமார் அவர்கள் மிருதங்கம். அடுத்த அறிவிப்பு இன்னும் சில நொடிகளில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षत विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण

0: संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.
2: The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Naveen Chandraram Gulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State Union Territory Police in the evening. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery.

0: by personnel of the armed forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. In Odisha, lakhs of devotees thronged the pilgrim city of Puri this morning as the sacred Deva Snan Jatra, or the Snan Jatra, or the ceremonial bathing festival of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra is being observed with traditional grandeur at the Sri Jagannath Temple. The deities have been brought in a ceremonial procession to the Snan Bedi, where they will be bathed with 108 pots of sanctified water drawn from the temple's sacred golden well amid Vedic chants, blowing of conches and devotional music. The annual ritual, held on the auspicious occasion of Deva Snan Purnima, marks an important prelude to the world-famous Rath Yatra. In Gujarat, the fourth vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh Mandavia, alongside key state ministers and global diplomats, will take part in the two-day conference, which aims to boost industrial development in central Gujarat region. Venezuelan National Assembly President George Rodriguez said that the death toll from the two powerful earthquakes that struck Venezuela Wednesday has risen to 1,450 after the two powerful magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes. Venezuela has recorded 430 light to moderate aftershocks, Rodriguez said in the latest government update on the national emergency. Earlier on Saturday, he said on state television that 3,238 people have been injured and 3,142 families affected by the disaster. Indian stock markets opened flat today, with investors and traders closely monitoring developments surrounding the US-Iran ceasefire and upcoming diplomatic discussions. Nifty opened at 24,062, up 6 points, while Sensex started marginally lower at 77,055, down 45 points in the early trade today. Meanwhile, the international benchmark Brent crude rose 1% to $72.78 per barrel, while US West Texas Intermediate crude gained more than 2% to nearly $71 per barrel. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eshtukuyo of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-host Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July 4th. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल खतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 1,450 हुई और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा

0: सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तो मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
3: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। श्री गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहुंचे। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, और खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा ले रहे हैं।
4: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
5: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिग्स ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430

0: धक्के महसूस किए गए।
1: इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अभी भी दिन रात खोज और बचाव कार्य में लगे हैं। अधिकारी राहत कार्यों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बचाव दल तटीय और पहाड़ी इलाकों में प्रभावित समुदाय तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस बीच वेनेजुएला फाउंडेशन फॉर सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ने बताया कि शनिवार को देश के मध्य क्षेत्र में 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिससे इस हफ्ते की शुरुआत में आए 2 विनाशकारी भूकंप के कारण पहले से ही डरी सहमी आबादी और अधिक परेशान हो गई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इस मैच में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए एलिस पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया। बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। भारतीय पुरुष टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। आयरलैंड के जय मंदुड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आयरलैंड ने 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। आयरलैंड ने पहला मैच 34 रन से जीता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 1,450 हुई। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். மீண்டும் திரைசே பாடல்கள் 11:10 திரை கானத்தில் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சு.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया. मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया. इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे. प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की. साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है. सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया. प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे. इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे. शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा. अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने

और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

உயர்ந்தவர் யாரு?

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री तीन दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का

उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से

0: भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र

0: रेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మే లవ్లీన్ నిగమ్. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी. हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा.
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी. ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं. ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं. साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में

0: दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों पर सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण विस्तार का उल्लेख किया और कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है। इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने, नवाचार को समर्थन देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं की गहराई बढ़ाने के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना के अंतर्गत 5 संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। औषधि विभाग ने बताया कि आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना और चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना MDCSS नामक 2 उप योजनाओं के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रस्ताव अगले 23 अगस्त या उससे पहले विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करने होंगे। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान की कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and the State UT Police. These awards are given in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the northeast and along the country's borders. They also recognize acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. In the presence of Home Minister Amit Shah, the governments of Haryana and Rajasthan today signed an agreement in New Delhi for the construction

0: रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए आवेदन वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आमंत्रित कर रहा है टीजीटी समाज विज्ञान पद के लिए। आवेदन पद नियमित है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.sainikschoolkorukonda.org। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रजिस्ट्रार का एक पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना चाहता है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार पात्रता की नियम और शर्तों, वेतनमान, आरक्षण और अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देख सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in और आवेदन कर सकते हैं। ईमेल का पता है dsadmin-cic@cic.nic.in। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ वैज्ञानिक बी, सी और डी वर्ग, प्रबंधक प्रशासन हिंदी अधिकारी, कार्यकारी सहायक हिंदी अनुवादक और एसोसिएट प्रशासन। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.c.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो करिश्मा, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू अस ऑन 100.1 FM गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: Upadhyayan. With me today is, of course, my co-host Karishma Rai. Well, listeners, he's celebrated as a Bengal tiger and a historical luminary because of three primary reasons. Firstly, because he was known for his fierce academic integrity. Secondly, he had an uncompromising stance against the British colonial authorities. And lastly, for his unmatched visionary leadership in transforming the University of Calcutta into a world-class center for indigenous research and higher learning. Yes, he's the man known for his courage and strong character. He is the pride and the tiger of Bengal. Yes, he's none other than Sir Ashutosh Mukherjee. And today we are celebrating his birth anniversary. And we shall talk about him later in the program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening.
1: हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे को की तीन दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली.
0: सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस अर्जेंट हियरिंग ऑन पीआईएल सीकिंग कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इन टू एलेज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन राम मंदिर डोनेशंस केस.
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी.
0: Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business.
1: दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू.
0: And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in the first knockout match at Los Angeles. Yes, now listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Camera Day and National Statistics Day. Well, Karishma, Roger Kingston very famously said, "A camera is a safe button for the mind's eye." Yes, and today we are celebrating something that helps us freeze our happiest moments forever, National Camera Day.
1: बिल्कुल. और श्रोताओं, चाहे कोई पारिवारिक समारोह हो, जन्मदिन की पार्टी हो, स्कूल का कोई कार्यक्रम हो या दोस्तों के साथ ली गई कोई आम सी सेल्फी, तस्वीरें खींचना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है.
0: Absolutely, that's true. And today almost everyone has a camera right in their pocket, the smartphone. But did you know that over 100 years ago, when the first camera was invented, people were amazed because they could finally preserve memories forever.
1: और यह सफर कितना शानदार रहा है. कागज पर छपी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से लेकर एकदम साफ डिजिटल इमेज और तुरंत ली जाने वाली सेल्फी तक कैमरों में जबरदस्त बदलाव आए हैं.
0: एग्जैक्टली करिश्मा, दैट्स व्हाई एवरी ईयर ऑन जून 29th कैमरा लवर्स सेलिब्रेट नेशनल कैमरा डे.
1: तो कैमरा सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेता, ये उन भावनाओं, कहानियों और यादों को भी कैद करता है जिन्हें हम जीवन भर संजो कर रखते हैं.
0: एंड हियर्स अ फन फैक्ट. The word photography comes from the Greek words meaning drawing with light. Isn't that beautiful, Karishma?
1: बिल्कुल. और हम सभी को तस्वीरें खींचना तो पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे की कहानी असल में कहां से शुरू हुई?
0: Yes, that's a great question. We use cameras every day, but the journey of this amazing invention goes back hundreds of years. So are you ready for a quick trip through history, listeners?
1: बिल्कुल. और इसकी कहानी आधुनिक फोटोग्राफी के बहुत पहले शुरू हुई थी. कैमरे जैसे सबसे पहला उपकरण अरब विद्वान इब्न अल हथम ने बनाया था और इसे कैमरा ऑब्स्कुरा कहा जाता था.
0: Yes, camera obscura, that's an interesting name. But what exactly did it do, Karishma?
1: खैर, आज के कैमरों की तरह ये तस्वीरें नहीं खींचता था, बल्कि इसके बजाय इसने दिखाया कि कैसे रोशनी किसी सपाट सतह पर तस्वीर बना सकती है. यह रोशनी से जुड़ी एक प्राकृतिक घटना पर आधारित था और आधुनिक कैमरों की नींव बना.
0: So Karishma, in a way, it was the first step towards photography. That's fascinating indeed.
1: बिल्कुल. और फिर एक और अहम पड़ाव आया 1816 में. फ्रांसीसी आविष्कारक जोसेफ नाइसफ्रोफ ने सबसे शुरुआती कैमरों में एक बनाया जो फोटोग्राफ को सुरक्षित रखने में सक्षम था.
0: Yes, and in 1829, Alexander Walcott introduced a more advanced camera that produced photographs which didn't fade as easily.
1: और उस सुधार ने बेहतर फोटोग्राफी का रास्ता साफ किया जिसने आगे चलकर आज हमें जो हाई क्वालिटी वाले कैमरे और स्मार्टफोन हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे बन पाए.
0: फ्रॉम द सिंपल कैमरा ऑब्स्कुरा टू टुडेज पावरफुल डिजिटल कैमरा.

0: us, one thing has remained the same, the desire to preserve memories.
1: और भारतीय सिनेमा हमेशा से अपनी शानदार कहानी कहने की कला, संगीत, डांस और भावनाओं के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन हर यादगार सीन के पीछे एक कैमरा होता है जो उसे जादू को कैद करता है। 1930 और 1940 के दशक की ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्मों से लेकर आज की शानदार विजुअल्स वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक कैमरे ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है।
0: एंड इन द अर्ली डेज फिल्म मेकर्स वर्क्ड विद बल्की manually operated cameras that had many limitations. Shooting a film required patience, precision, and a great deal of effort. Despite these challenges, legendary classics laid the foundation for the Indian film industry.
1: और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, कैमरे हल्के और ज्यादा भरोसेमंद हो गए और उनमें रंगीन फिल्में शूट करने की क्षमता भी आ गई। इस बदलाव ने भारतीय सिनेमा में जान डाल दी, जिससे दर्शक शानदार कॉस्ट्यूम, मनमोहक नजारे और भव्य म्यूजिकल सीक्वेंस का आनंद ले पाए। डायरेक्टर भारत की खूबसूरत जगहों पर शूटिंग कर सकते थे, कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर केरल के बैक वाटर्स और राजस्थान के रेगिस्तान तक।
0: Absolutely, and the digital revolution was another turning point. Digital cameras reduced production costs and allowed filmmakers to review scenes instantly instead of waiting for film to be developed. And this made filmmaking faster, more efficient, and more accessible to new directors and independent creators.
1: बिल्कुल, और आजकल भारतीय फिल्मों की शूटिंग एडवांस डिजिटल कैमरों से की जाती है, जो 4K और 8K जैसे अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। ये कैमरे हर बारीक डिटेल को कैप्चर करते हैं, जिससे एक्शन सीन, डांस परफॉर्मेंस और इमोशनल पल ज्यादा असली और शानदार दिखाई देते हैं।
0: एंड मॉडर्न कैमरा टेक्नोलॉजी हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्रोन्स, गिम्बल्स एंड कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरास, एंड दीज इनोवेशंस अलाउ फिल्ममेकर्स टू कैप्चर स्पेक्टेकुलर एरियल views, smooth tracking shots, and thrilling action sequences. Whether it's a historical epic, a sports drama, or a regional film, today's visuals are more immersive than ever.
1: और कैमरा टेक्नोलॉजी में भी विकास ने भारतीय फिल्म निर्माताओं को ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करने में मदद की है। शानदार सिनेमेटोग्राफी और एडवांस विजुअल इफेक्ट्स की वजह से भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और वे दुनिया भर में दर्शकों तक पहुंच पाई हैं।
0: एवरी क्लिक टेल्स अ स्टोरी, एवरी फोटोग्राफ कैप्चर्स एन इमोशन, एंड एवरी मेमोरी बिकम्स टाइमलेस।
1: तो तस्वीरें खींचते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि कैमरे का इतिहास हमें याद दिलाता है कि एक बहुत साधारण सा विचार भी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है।
0: ऑन दिस नेशनल कैमरा डे वी पे ट्रिब्यूट टू होमाई वियारावाला, इंडियाज़ फर्स्ट वुमन फोटो जर्नलिस्ट हुज कैमरा बिकेम अ विटनेस टू हिस्ट्री।
1: और अपनी शानदार तस्वीरों के जरिए उन्होंने हिम्मत, लगन और बारीकियों पर असाधारण नजर के साथ भारत की आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण तक के सफर के अहम पलों को कैद किया।
0: हर लेगेसी रिमाइंड्स अस दैट अ कैमरा इज नॉट जस्ट अ डिवाइस, इट्स अ पावरफुल टूल फॉर प्रिजर्विंग हिस्ट्री, टेलिंग स्टोरीज एंड इंस्पायरिंग जनरेशंस। सो हैप्पी नेशनल कैमरा डे।
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मना रहे हैं, जो हर साल 29 जून को मनाया जाता है।
0: That's right, and do you know why this day is so special? It marks the birth anniversary of Professor Prashant Chandra Mahalanobis, fondly known as the father of Indian statistics.
1: तो सुनने में सांख्यिकी भले ही सिर्फ नंबरों वाला विषय लगे, लेकिन असल में यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर ऐसे असर डालता है जिनका हमें अक्सर पता भी नहीं चलता।
0: Absolutely, whether it's planning schools, hospitals, transport, or even understanding population trends, statistics help governments make informed decisions.
1: और असल में भारत सरकार ने प्रोफेसर महालनोबिस और सांख्यिकी तथा आर्थिक योजना में उनके असाधारण योगदान के सम्मान में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया था।
0: एंड हिज अचीवमेंट्स आर ट्रूली रिमार्केबल। ही फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इन कोलकाता इन 1931, व्हिच हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग सेंटर्स फॉर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस।
1: उन्होंने 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई, जिससे परिवारों और देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में भरोसेमंद डेटा इकट्ठा करना संभव हो सका।
0: एंड दैट्स नॉट ऑल, एज अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन ही इंट्रोड्यूस्ड द फेमस महालनोबिस मॉडल, व्हिच फोकस ऑन डेवलपिंग हैवी इंडस्ट्रीज टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ इकॉनमी।
1: और इसके साथ ही अभिषेक,

0: हमारे श्रोताओं के लिए एक मजेदार सवाल भी है कि आपने कभी सोचा है कि स्कूलों को कैसे पता चलता है कि कितने क्लासरूम बनाए गए हैं या किसी शहर को कितनी बसों की जरूरत होती है?
1: द आंसर करिश्मा इज स्टैटिस्टिक्स. Numbers help planners understand people's needs and make better decisions.
0: और प्रोफेसर महाल नोबिस ने मशहूर महाल नोबिस डिस्टेंस भी विकसित किया था, जो एक सांख्यिकीय तरीका है जो आज भी डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और वैज्ञानिक रिसर्च में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है.
1: Yes, and the principal scientific advisor to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra, today underlined the growing importance of leveraging data generated through administrative processes for evidence-based policy making and governance. He said this while addressing an event held in New Delhi to mark the 20th Statistics Day. Mr. Mishra underscored Prime Minister Narendra Modi's vision that India must become an expert in data-driven decision making so that policy design and implementation become more accurate.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमें याद दिलाता है कि हर अहम फैसले के पीछे सटीक डेटा और सोच समझकर किया गया विश्लेषण होता है.
1: सो द नेक्स्ट टाइम यू हियर नंबर्स इन द न्यूज, रिमेंबर दे आर मोर देन जस्ट फिगर्स, दे टेल द स्टोरी ऑफ अ नेशन.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा. परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे.
1: एंड ड्यूरिंग द प्रोग्राम लिसनर्स कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 PM onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
1: In Odisha, lakhs of devotees thronged the pilgrim city of Puri this morning as the sacred Dev Snan Jatra or the Snan Jatra or the ceremonial bathing festival of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra has been observed with traditional grandeur at the Sri Jagannath Temple. We have more from a correspondent.
2: Lakhs of devotees witnessed the sacred Devasnana Purnima of Lord Jagannath at Puri today, marking the ceremonial commencement of this year's Rath Yatra festivities. Amid an atmosphere of profound devotion, Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan were ceremonially escorted in the traditional Pahandi Vijay procession from the Sanctum Sanctorium to the Snana Mandap, accompanied by the reverberating strains of conch shells, cymbals and temple percussion. In accordance with centuries-old temple traditions, the deities were ritually bathed with 108 pitchers of sanctified fragrant water drawn from the sacred Sunakua or golden well within the temple precincts. Following the elaborate ablution, the deities were adorned in the distinctive Gajanana or Hathi Vesa. They will now remain in ritual seclusion during the fortnight-long Anasara period before reappearing for the Navajovana Darsana ahead of the annual Rath Yatra scheduled to commence on the 16th of next month. Prakash Das, आकाशवाणी न्यूज, भुवनेश्वर.
0: बढ़ते आगे बात करते हैं नागपुर की. हाल ही में नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत जीएमआर समूह को औपचारिक हस्तांतरण किया गया. इस पहल को नागपुर और पूरे विदर्भ के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसी विषय पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट.
3: डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और विस्तार मध्य भारत के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है. हाल ही में पीपीपी मॉडल के तहत हवाई अड्डे का संचालन जीएमआर समूह को सौंपा गया. इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे. समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आधुनिक हवाई अड्डे से विदर्भ में व्यापार, पर्यटन, लॉजिस्टिक, खनन और निवेश को

0: नई गति मिलेगी तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने नागपुर की देश के भौगोलिक मध्य स्थित रणनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए इसे मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक और औद्योगिक केंद्र बनने की क्षमता रखने वाला शहर बताया।
1: नागपुर एक जीरो माइल है और नागपुर की विशेषता ये है कि नागपुर से चारों मेट्रो सिटी कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली ये सवा घंटे डिस्टेंस पर है। नागपुर में नेशनल हाईवे भी उसका भी जीरो माइल नागपुर में है, दिल्ली मद्रास और मुंबई कलकत्ता का। और विशेष रूप से नागपुर की जो विशेषता है वो नागपुर में लॉजिस्टिक कैपिटल के रूप में भी अब नागपुर डेवलप हो रहा है।
0: गडकरी ने नागपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनका कहना था कि इससे वैश्विक व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
2: The Northeast Infrastructure Summit was held on the 15th and 16th of this month in Shillong. Several sessions were held with focus on discussion

0: डिस्टेंस पर है। नागपुर में नेशनल हाईवे भी उसका भी जीरो में नागपुर में है, दिल्ली मद्रास और मुंबई कलकत्ता का। और विशेष रूप से नागपुर की जो विशेषता है वो नागपुर में लॉजिस्टिक कैपिटल के रूप में भी अब नागपुर डेवलप हो रहा है।
1: गडकरी ने नागपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनका कहना था कि इससे वैश्विक व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
2: The Northeast Infrastructure Summit was held on the 15th and 16th of this month in Shillong. Several sessions were held with focus on discussions relating to tourism, connectivity across the region, and also aviation. We have more from a correspondent.
3: The recently concluded Northeast India Infrastructure Summit in Shillong sent out a positive message that the Northeast region is steadily moving from the periphery to the center of the country's development story. Held on the 15th and 16th of this month, the summit brought together policy makers, industry leaders, and investors to explore new opportunities in infrastructure, connectivity, and investment. While road connectivity remained a key focus, discussions also covered aviation, waterways, digital infrastructure, and tourism. Addressing the summit, Union Minister Nitin Gadkari stressed that improved infrastructure is essential to unlock the region's economic potential. He also announced and dedicated several national highway projects worth over 3,000 crore rupees in Meghalaya. This is aimed at improving connectivity, reducing travel time and facilitating trade. The summit also highlighted the importance of stronger public-private partnerships and greater investment to harness the Northeast region's strategic location. As the curtains came down on the event, the focus has now shifted from deliberations to implementation, with infrastructure expected to become a key driver of growth, employment, and regional integration. For Parikrama, Anumita Das, Akashvani, Shillong.
4: गोवा को अगले 3 वर्षों में नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ पुलिस ने विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
5: ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने की दिशा में गोवा पुलिस ने कदम बढ़ाया है। अगले 3 वर्षों में राज्य को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें कार्रवाई के साथ साथ जन जागरूकता पर भी बराबर जोर दिया जाएगा। इसी संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस के अवसर पर तालगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से 10 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। करीब 800 लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। सेना, तटरक्षक बल और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों की भागीदारी ने इस अभियान को और व्यापक बनाया। इस अवसर पर गोवा के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने कहा कि
6: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगले 3 साल में नशा मुक्त भारत का एक रोड मैप तैयार हुआ है और उसके तहत गोवा पुलिस आगे 3 साल में नशा मुक्त गोवा का एक रोड मैप बना रही है। पिछले 5 सालों में गोवा पुलिस ने 900 से ज्यादा केसेज रजिस्टर किए हैं, 1000 से ज्यादा लोगों को ड्रग के केसेज में अरेस्ट किया है, 1000 केजी से ज्यादा ड्रग सीज भी किया है और बहुत सारा डिस्ट्रॉय भी किया है। लेकिन केवल एनफोर्समेंट से ड्रग के खिलाफ की लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, इसके लिए कम्युनिटी आउटरीच फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल पे भी हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि नशा मुक्त भारत का जो सपना है वो साकार हो सके।
5: गोवा पुलिस का मानना है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी और लगातार जन जागरूकता से ही नशा मुक्त गोवा का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
4: और श्रोताओं, चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया।
2: And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended almost 0.5% down today. The Sensex fell 372 points to close at 76,728. The Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. And for more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
4: और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
7: हम क्रांतिकारी

0: स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनका जन्म 29 जून 1901 को वर्तमान बांग्लादेश के पबना में हुआ था। लाहिड़ी ने अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ठाकुर के साथ मशहूर काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था।
1: लाहिड़ी को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में बदलाव का प्रतीक माना जाता है। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन ने ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद से विचारधारा में समाजवाद तक और धार्मिक आस्थाओं में अनीश्वरवाद तक का परिवर्तन देखा।
0: लाहिड़ी ने सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों को लगातार चुनौती दी, इस सीमा तक कि उन्होंने उस पावन जनेऊ को भी अमान्य करार दिया जो ब्राह्मणों के लिए अभिन्न माना जाता था। उनका मानना था कि सामाजिक पूर्वाग्रह प्रगति के मार्ग की बाधाएं हैं और हमें इन्हें दूर करना होगा।
1: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का परिचय विख्यात क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी में आजादी की चिंगारी और ललक देखकर सान्याल ने उन्हें बंगवाणी पत्रिका का संपादक तथा अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा का समन्वयक और शस्त्र प्रभारी बना दिया। सान्याल की प्रेरणा से लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। 9 अगस्त 1925 को इतिहास प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह के साथ मिलकर सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लखनऊ के निकट लूट लिया।
0: लाहिड़ी ने दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन को रोका। काम पूरा हो जाने पर लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारी अलग अलग स्थानों में तितर बितर हो गए।
1: काकोरी घटना के बाद लाहिड़ी और 8 अन्य क्रांतिकारियों को बम बनाने का काम सीखने के लिए दक्षिणेश्वर की एक बम फैक्ट्री में भेजा गया। बताया जाता है कि उनके काम के दौरान विस्फोट की एक तेज आवाज ने पुलिस को सतर्क कर दिया और वे सभी गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दक्षिणेश्वर बम मामले में लाहिड़ी को साजिश का मुख्य आरोपी पाया गया और 10 वर्ष की सजा देकर अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया। हालांकि जब काकोरी मामला शुरू हुआ तो लाहिड़ी को साजिश रचने में सहयोगी पाया गया और सुनवाई के लिए उन्हें सेल्युलर जेल से लखनऊ सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया।
1: यहां अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया। 17 दिसंबर 1927 को लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला जेल में फांसी दे दी गई। फांसी देने की तय तारीख से 2 दिन पहले ही, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को भय था कि ये क्रांतिकारी जेल से भाग निकलेंगे।
0: लाहिड़ी की फांसी न केवल क्रांतिकारियों के इतिहास में अमिट है बल्कि ये मृत्यु दंड के इतिहास में भी अंकित है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी फांसी निर्धारित तिथि से पहले दी गई हो।
1: इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का कोटि कोटि नमन।
2: Yes, and we also remembering Michael Madhusudan Dutt, who passed away on this day in 1873. He was a celebrated 19th century poet and dramatist, widely regarded as a father of modern Bengali poetry. He revolutionized Indian literature by breaking away from traditional rigid poetic forms and introducing Western literary structures. His legacy in shaping South Asian literature rests on several groundbreaking achievements. Firstly, he was a pioneer of the blank verse and used it in his first Bengali play, Sharmishtha. He also wrote the first Bengali epic, Meghnad Bad Kavya, in 1861. He also pioneered the Bengali sonnet form. And Karishma, he was a gifted linguist, proficient in English, Greek, Latin, French, Italian, Sanskrit, Persian, Tamil and Telugu.
3: और इसके साथ ही आज प्रख्यात चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, कला शिक्षक और लेखक केजी सुब्रमण्यम की पुण्यतिथि है। वे भारतीय आधुनिक कला के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। 5 फरवरी 1924 को केरल के कुथु परंपरा में जन्मे केजी सुब्रमण्यम ने चित्रकला, मूर्तिकला और टेराकोटा कांच कला, प्रिंट मेकिंग और बच्चों की पुस्तकों के चित्रांकन सहित अनेक विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया और उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और वर्ष 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कालिदास सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले थे।
2: Yes, and Katharine Hepburn was a legendary American actress whose career on stage and screen spanned over 6 decades. And in 1999, the American Film Institute named her the greatest female star in the history of American cinema. And known for her fierce independence, sharp wit, and unconventional

0: वंदे मातरम और राष्ट्रगान। अब रक्षा सचिव राजेश जी अनुमति प्राप्त करते हुए आज के समारोह।
1: राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने अभिवादन कर स्वीकृति दी और अब ये रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है।
2: The first set of awards that
3: अति विशिष्ट सेवा मेडल, असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल तरुण चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट।

0: லெப்டினன்ட் ஜெனரல் நீரஜ் வாஷ்னே, விசிஷ்ட் சேவா மெடல்.
1: லெப்டினன்ட் ஜெனரல் நீரஜ் வாஷ்னே, விஎஸ்எம், த கோர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், ஜாதே ஹுவே மகாமஹிம் ராஷ்டிரபதி ஜி கே சாம்னே சல்யூட் கர்தே ஹுவே சதைவ கத்மோ சே, ஆர் பிராப்த் கரேங்கே வே அதி விசிஷ்ட் சேவா மெடல். और ये तालियां इस बात का परिचायक कि सैनिक ने राष्ट्र की सेवा की है.
0: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला, सेना मेडल बा.
2: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला, सेना मेडल, द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला अपनी

0: सैनिक परिधान में। कोर ऑफ इंजीनियर्स के आप अधिकारी हैं और अपना सम्मान प्राप्त करके
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बांद्रा सेना मेडल।
0: कोर ऑफ सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बांद्रा सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मान देते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद
1: लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
0: इन्फेंट्री के हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह, YSM, SM, सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को और अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए सदैव कदमों से राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए। गौरव का क्षण इन सैन्य अधिकारियों के लिए और परिवार के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन करते
1: साक्षी बनते हुए। रंजीत सिंह,
2: Lieutenant General Ranjit Singh, the Regiment of Artillery, saluting the President and marching towards the dais.
0: Artillery के अधिकारी हैं आप, Lieutenant General Ranjit Singh, Regiment of Artillery के अति विशिष्ट सेवा मेडल और ये सैल्यूट।
1: Lieutenant General Ajay Kumar, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Lieutenant General Ajay Kumar, Vishesh Seva Medal, the Infantry.
0: Infantry ke adhikari, Lieutenant General Ajay Kumar, Ati Vishesh Seva Medal prapt karte hue.
2: Decorated with the Ati Vishesh Seva Medal.
1: Lieutenant General Shamsher Singh Virk, Sena Medal.
0: Lieutenant General Shamsher Singh Virk, Infantry ke adhikari hain aur Bharatiya सशस्त्र सेना भारतीय सेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दिए इसलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह, वी आर हियर रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
1: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: The Brigade of the Guards के लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने और अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
2: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेवा मेडल रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, आज इन्हें मिलने जा रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल। द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं आप, राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें सैल्यूट करते हुए और अपना मेडल प्राप्त करते हुए।
1: लेफ्टिनेंट जनरल Chiyarath Gopalan Muralidharan.
2: Lieutenant General Chiyarath Gopalan Muralidharan, the Army Medical Corps.
0: Army Medical Corps के अधिकारी हैं Lieutenant General Chiyarath Gopalan Muralidharan. भारतीय सेना की ओलिव ग्रीन वर्दी धारण किए हुए राष्ट्रपति जी से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए। परिवार के सदस्य उनकी पत्नी और उनकी पुत्री
1: Lieutenant General Puneet आहुजा सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहुजा, रेसिपिएंट ऑफ सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल, द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहुजा VSM प्राप्त कर चुके हैं, आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। राष्ट्रपति जी ने उनके सीने पर ये मेडल उनकी शान बढ़ाने के लिए लगाया, पुत्री और पत्नी।
1: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई, विशिष्ट सेवा मेडल, विल रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: नौसेना के अधिकारी

0: हमारी वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई वीएसएम प्राप्त कर चुके हैं। आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की, भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी, और इस वक्त प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर।
0: वाइस एडमिरल रजत कपूर जाते हुए राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ पहले सैल्यूट किया है, नेवी का जो अलग सैल्यूट होता है, उसके बाद जाते हुए मंच की तरफ और अब प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल रजत कपूर रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली।
0: और अब बारी भारतीय नौसेना के एक और अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली की। आप अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के, भारतीय नौसेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है, इसीलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है आज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
3: वाइस एडमिरल सुशील मेनन विशिष्ट सेवा मेडल।
0: और अगली बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की वाइस एडमिरल सुशील मेनन की। विशिष्ट सेवा मेडल इनके सीने पर टंगा हुआ है, जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पहुंचकर अपना पदक प्राप्त करते हुए।
3: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी।
0: नौसेना के ही सम्मानों की बारी, अब आगे आते हुए वाइस एडमिरल अनिल जग्गी पहले मंच के सामने जाकर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं, उसके बाद में पदक प्राप्त करने के बाद भी सैल्यूट करते हैं, फिर अपने स्थान तक जाते हैं।
2: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: सर्जन रियर एडमिरल वर्तमान में सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे विशिष्ट सेवा मेडल।
0: रबारी सर्जन रियर एडमिरल, अब सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे की, जिन्हें वीएसएम मिल चुका है और आज प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: सर्जन रियर एडमिरल नाउ सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
0: और अब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बारी, एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल कोंडन कोलंगारा अबू अहमद संजीव विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल कोंडन कोलांगरा अबू अहमद संजीव वीएसएम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के सदस्य हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर वाइस मार्शल वर्तमान में एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Air Vice Marshal, now Air Marshal Settipalli Srinivasa Rao, Vishisht Seva Medal, Aeronautical Engineering, receiving the Ati Vishisht Seva Medal from the President.
0: Aeronautical Engineering Electronics ke Air Vice Marshal, ab Air Marshal hain aap, Settipalli Srinivasa Rao, Ati Vishisht Seva Medal praapt karte huye, Bharati Vayu Sena ka hi adhikari, Rashtrapati ji ko.
3: Upper Mahanideshak Donnie Michael, President's Tatrakshak Medal, Tatrakshak Medal.
2: Additional Director General Donnie Michael, PTM, TM,

0: भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डोनी माइकल अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। मुस्कुराकर फोटो खिंचाते हुए उनकी धर्मपत्नी तालियां बजाते हुए सैल्यूट करके वापस अपने स्थान तक जाते हुए
1: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, सेवा मेडल, VSM, रिटायर्ड।
0: नारी शक्ति का प्रतीक सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, अब सेवानिवृत्त है। लेकिन आज सम्मान करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें प्रदान करती हुई, और ये इतनी सारी तालियां इस बात का प्रतीक हैं।
1: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल, VSM, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा विशिष्ट सेवा मेडल पहले से लगा हुआ है और आज प्राप्त हुआ है इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पहल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब बारी है इन्फेंट्री के ही एक और अधिकारी मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल की, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्राप्त हो चुका था, आज इन्हें मिल रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल, VSM, द इन्फेंट्री, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अति विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल सुजीत, beg your pardon, मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, SM, VSM, द आर्मी एयर डिफेंस।
0: आर्मी एयर डिफेंस के अधिकारी मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्हें प्रदान कर रही हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को
1: मेजर जनरल आशीष शाह, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल आशीष शाह, सेना मेडल, द आर्मड कॉर्प्स मार्चिंग टुवर्ड्स द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मड कोर के अधिकारी मेजर जनरल आशीष शाह महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए और प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल अमर राम दसानी, युद्ध सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल अमर राम दसानी, युद्ध सेवा मेडल, द इन्फेंट्री।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल अमर राम दसानी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सामने मौजूद हैं और प्राप्त कर रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: मेजर जनरल विकास चौधरी, युद्ध सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल विकास चौधरी, युद्ध सेवा मेडल, द इन्फेंट्री, टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: सैल्यूट करते हुए और जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं। और एक जोशीली मुस्कान उनके चेहरे पर सलामी देते हुए
3: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल,
0: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, आर्टिलरी का अधिकारी, राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
2: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
3: मेजर जनरल वूदे परिदा, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, the Regiment of Artillery, saluting the President and receiving the Ati Vishesh Seva Medal.
0: The Regiment of Artillery ka adhikari Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, inhe pradan kiya ja

0: चुका है अति विशिष्ट सेवा मेडल,
1: मेजर जनरल सुमित मेहता विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुमित मेहता विशिष्ट सेवा मेडल द आर्मर्ड कॉर्प्स।
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल सुमित मेहता विशिष्ट सेवा मेडल अब राष्ट्रपति जी ने प्रदान करेंगी अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं आप मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए
2: मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे इन्फेंट्री।
1: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडबाल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडबाल अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ सेना मेडल एंड विशेष सेना मेडल विल रिसीव अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडबाल विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज अलंकृत होंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल से। ये एक और खुशी की बात क्योंकि पुत्री
1: मेजर जनरल विवेक नारंग।
2: मेजर जनरल विवेक नारंग फ्रॉम द इन्फेंट्री सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल विवेक नारंग। राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना पदक ग्रहण करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल गर्वीली मुस्कान उनकी पुत्री और पत्नी तालियां बजाकर।
1: मेजर जनरल परमवीर सिंह पुनिया सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल परमवीर सिंह पुनिया सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल विल रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी परमवीर सिंह पुनिया विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति जी से।

0: மேஜர் ஜெனரல் கோலங்கரா மோகன் நாயர், யுத்த சேவா மெடல், சேனா மெடல்.
1: இன்ஃபென்ட்ரி கி ஹி அதிகாரியோ கி பாரி சல்தி ஹுயி, பஹுத் சேவா கி இன்ஹோனே ராஷ்ட்ர கி சஷஸ்த்ர சேனாவோ கி, ஔர் அப் பாரி ஹை மேஜர் ஜெனரல் கோலங்கரா மோகன் நாயர் கி.
2: Major General Kolankara Mohan Nair, YSM SM, receiving Gati Vishesh Seva Medal.
0: Major General Arindam Saha, Yuddha Seva Medal, Sena Medal.
2: Major General Arindam Saha, Youth Sena Medal, Sena Medal, saluting the President and receiving Gati Vishesh Seva Medal this evening.
1: Yuddha Seva Medal or सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के मेजर जनरल अरिंदम साहा, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल.
2: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल. टुडे इट्स हिज टर्न टू रिसीव अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी एसएम बीएसएम मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ.
0: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेना मेडल.
2: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेवा मेडल.
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें प्राप्त होता हुआ राष्ट्रपति जी के हाथों, जो कि सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं.
0: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल.
2: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री.
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल

0: प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल।
2: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल इज एन एक्स्ट्रा रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल।
2: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब आरी आ रही है नौसेना के अधिकारियों की रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल। आज सम्मानित हो रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति जी के हाथों से।
1: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी।
2: Air Vice Marshal Kaushik Chatterjee, Medical, to receive the Ati Vishisht Seva Medal.
0: भारतीय वायु सेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी, राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ, वायु सेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: The next recipient of Ati Vishisht Seva Medal is Air Vice Marshal Sanjeev Vashisht, VM Flying Pilot.
0: Abari, भारतीय वायु सेना के इस पायलट की Air Vice Marshal Sanjeev Vashisht Ati Vishisht Seva Medal आज गणतंत्र मंडप में उन्हें प्राप्त होता हुआ।

0: ஏர் வைஸ் மார்ஷல் வடபள்ளி ரவி சத்யநாராயண் ராஜு விசிஷ்ட் சேவா மெடல்.
1: ஏர் வைஸ் மார்ஷல் வடபள்ளி ரவி சத்யநாராயண் ராஜு விசிஷ்ட் சேவா மெடல் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் டு ரிசீவ் தட் விசிஷ்ட் சேவா மெடல்.
2: और अब वायुसेना के एक और अधिकारी एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार, एयर वाइस मार्शल वाडापल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मॉडल, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल विंग के अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान VM flying pilot
2: अब भारतीय
1: receiving that विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह।
1: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह एडमिनिस्ट्रेशन फाइटर कंट्रोलर।
2: भारतीय वायुसेना के फाइटर कंट्रोलर हैं एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, आपको प्राप्त होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल आपकी सेवाओं के लिए।
0: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा VM flying pilot is the next recipient of Ati Vishisht Seva Medal.
2: Aur ab bari Ati Vishisht Seva Medal prapt karne ki Air Vice Marshal Manu Mida ki, aap ek pilot hain.
0: Major General Rajesh Arun Moghe Vishisht Seva Medal Seva Nivrat.
2: Major General Rajesh Arun Moghe विशिष्ट सेवा मेडल, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज एक और उपलब्धि इनके कैरियर में जुड़ती हुई, इन्हें मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे।

0: Anderson receiving Dutchie Vishisht Seva Medal.
1: Major General Sandeep Kumar, Vishisht Seva Medal, Seva Nivrit.
0: Major General Sandeep Kumar, Vishisht Seva Medal, the Judge Advocate General Department, retired, is receiving Dutchie Vishisht Seva Medal.
2: Major General Sandeep Kumar, Vishisht Seva Medal, the Judge Advocate General Department, retired ho chuke hain, Ati Vishisht Seva Medal, prapt karte hue, Rashtrapati ji ke kar kamlon se. Aur salute.
1: Major General Parag Anant Deshmukh, Seva Nivrit.
0: Major General Parag Anant Deshmukh, the Army Medical Corps, retired, is the next recipient of Dutchie Vishisht Seva Medal this evening.
2: Army Medical Corps ke Major General Parag Anant Deshmukh ab retire ho chuke hain, prapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal.
1: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, Udan Pilot, Seva Nivrit.
0: Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, flying pilot, retired.
2: Aur ab Rashtrapati ji ke samne jaate hue Air Vice Marshal Satish Kumar Mathur, aap Vayu Sena mein Udan Pilot the, retire ho chuke hain, prapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal. Rashtrapati ji ke kar kamlon se.
1: Air Vice Marshal Nand Kumar Nair, Vishisht Seva Medal, Seva Nivrit.
0: Air Vice Marshal Nand Kumar Nair, VSM Aeronautical Engineering Electronics, retired, receiving Dutchie Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायु सेना के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग में रहे और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम संभालने वाले एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए
1: ब्रिगेडियर पवन धुल, विशिष्ट सेवा मेडल.
0: ब्रिगेडियर पवन धुल, बीएसएम, द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स.
2: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी ब्रिगेडियर पवन ढुल विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की, प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से. अब बारी सैल्यूट की.
1: सुबेदार एच होकाटो सेमा, 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता, वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित.
0: सुबेदार एच होकाको सेमा, 9 असम, रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड्स.
2: सुबेदार होकाको सेमा, कौन नहीं जानता इन्हें, भारतीय सेना के हैं लेकिन अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, शॉटपट के खिलाड़ी रहे हैं 9 असम के. राष्ट्रपति जी के सामने अपना पदक प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे. युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है. आर्मर्ड कोर हेडक्वार्टर साउथ सदर्न कमांड का नेतृत्व करते हैं, उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से.
0: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम एवीएसएम, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट.
3: एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट.
2: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है, आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
0: एयर मार्शल मनीष खन्ना, एवीएसएम, वीएम फ्लाइंग, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
3: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल.
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, एवीएसएम, एसएम, द पैराशूट रेजिमेंट.

0: to receive the Uttam Youth Seva Medal from the President.
1: Agla Youth Uttam Youth Seva Medal, Lieutenant General Prashant Srivastav ko milta hua. Ati Vishisht Seva Medal, Parachute Regiment Headquarter ke aap adhikari hain.
2: Lieutenant General Rajan Sharawat, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
1: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर से 9 कोर के अधिकारी अति विशिष्ट सेवा मेडल और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शरावत.
0: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शरावत एवीएसएम वीएसएम रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल.
0: Lieutenant General Abhijit S. Pendarkar, AVSM, YSM from the Assam Regiment, receiving the Uttam Youth Seva Medal.
1: The Assam Regiment ke Lieutenant General Abhijit Pendarkar, Ati Vishisht Seva Medal, Yuddha Seva Medal inhe mil chuka hai, aur aaj prapt hota hua Uttam Youth Seva Medal.
2: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल.
0: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम एंड वाईएसएम फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
1: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं. उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल.
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल. द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
1: जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं. युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं. प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: वाइस एडमिरल तरुण सोपती अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल.
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती एवीएसएम वीएसएम.
1: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल उड़ान पायलट.
0: एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
1: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप. एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी वायु सेना मेडल उड़ान पायलट.
0: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी वायु मेडल फ्लाइंग पायलट receiving the Uttam Youth Seva Medal this evening.
1: और अब बारी है एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी की. आप फ्लाइंग पायलट हैं और युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: एयर कमोडोर प्रभात मलिक वायुसेना मेडल उड़ान पायलट.
0: Air Commodore Prabhat Malik, Vayu Sena Medal, Flying Pilot, receiving the Uttam Youth Seva Medal.
1: Vayu Sena ke hi ek aur adhikari apni vishisht sevaon ke liye prapt karte hue Uttam Youth Seva Medal. Air Commodore Prabhat Malik.
2: Group Captain Kamran Nazir, Udan Pilot.
0: Group Captain Kamran Nazir, Flying Pilot, to receive the Uttam Youth Seva Medal.
1: और अब बारी वायु सेना के एक और अधिकारी की कि वे जाएं और राष्ट्रपति जी से उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करें. यह हैं ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर.

0: परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सर्वप्रथम वाइस एडमिरल वर्तमान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल नाउ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
2: और अब बारी परम विशिष्ट सेवा मेडल की। सबसे पहले एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, एवीएसएम है, वीएसएम है, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह एवीएसएम वाईएसएम वीएसएम फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में

0: பத்தி விசிஷ்ட சேவா மெடல், யுத்த சேவா மெடல், விசிஷ்ட சேவா மெடல்.
1: லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மஞ்சிந்தர் சிங், AVSM, YSM, VSM from the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह की, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं।
0: वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
1: The next recipient of the Param Vishisht Seva Medal this evening is Vice Admiral Sanjay Vatsayan, AVSM NM.
2: Bharatiya Nausena ke adhikari Vice Admiral Sanjay Vatsayan Ati Vishisht Seva Medal Navy Medal prapt kar chuke hain. Param Vishisht Seva Medal prapt karke Rashtrapati ji ko salute karte hain.
0: Vice Admiral Ajay Kochhar, Ati Vishisht Seva Medal, Nausena Medal.
1: Vice Admiral Ajay Kochhar, Ati Vishisht Seva Medal, Nausena Medal, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: और अब जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Air Marshal Ashutosh Dikshit, AVSM, VM, VSM Flying Pilot, is the next recipient of the Param Vishisht Seva Medal.
2: अब राष्ट्रपति जी से परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, अब भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
0: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
1: एयर मार्शल तजिंदर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: परम विशिष्ट सेवा मेडल की श्रृंखला में अब माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, आप पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
0: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एक और अधिकारी एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
0: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
0: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इसी श्रृंखला में आज जुड़ने जा रहा है परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली, UYSM, AVSM, SM, VSM फ्रॉम द इन्फेंट्री टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा।

0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: जनरल मनीष मोहन एरी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी, UYSM, AVSM, SM from the infantry, receiving the Param Vishesh Seva Medal.
0: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही, UYSM, AVSM, YSM, SM from the infantry, receiving the Param Vishesh Seva Medal.
0: Infantry के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही प्राप्त करते हुए अपना सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: The next recipient of the Param Vishesh Seva Medal this evening is Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha, AVSM, SM from the infantry.
0: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha ati vishisht Seva Medal prapt kar chuke hain, prapt karte huye Param Vishesh Seva Medal.
1: Lieutenant General सुमेर आइवन डिकुन्हा, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर आइवन डिकुन्हा, सेना मेडल, फ्रॉम द आर्मी एयर डिफेंस, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मी एयर डिफेंस के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर आइवन डिकुन्हा अप्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से।
1: सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अबारी नारी शक्ति की वाइस एडमिरल आरती सरीन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं और आज गौरव से प्राप्त कर रही हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, receiving the Param Vishesh Seva Medal.
0: भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे हैं मैकेनिकल विंग में। एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल सूरज सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट, सेवानिवृत्त।
2: The next recipient of Param Vishesh Seva Medal this evening is Air Marshal Surat Singh, AVSM, VM, VSM, retired.
0: भारतीय वायुसेना के पायलट रहे हैं एयर मार्शल सूरत सिंह,

0: अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को
1: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त
2: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल
0: और अब पारी है परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया की आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और रिटायर हो चुके हैं प्राप्त करते हुए अपना पदक राष्ट्रपति जी के हाथों से
1: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त
2: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद रिटायर होने के बाद आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल
1: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल सेवानिवृत्त
2: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री रिटायर्ड
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी भारतीय सेना को आपने अपनी सेवाएं दी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं प्राप्त कर रहे हैं अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल
1: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त
2: Lieutenant General Jagmohan Singh Sidana, Ati Vishish Seva Medal from the Electronics and Mechanical Engineers, retired.
0: And now, the Corps of Electronics and Mechanical Engineers ki sevaen de chuke, Lieutenant General Jagmohan Singh Sidana ki Ati Vishish Seva Medal, aap retire ho chuke hain aur prapt kar rahe hain Param Vishish Seva Medal.
1: Lieutenant General K. Vinod Kumar, Ati Vishish Seva Medal, Seva Nivritt.
2: Lieutenant General K. Vinod Kumar, recipient of Ati Vishish Seva Medal, retired, will receive the Param Vishish Seva Medal.
0: Corps of Signals में आपने काम किया था, Lieutenant General K. Vinod Kumar, Ati Vishish Seva Medal प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद Param Vishish Seva Medal.
1: Air Marshal Sunil Kashinath Vidhate, Ati Vishisht Seva Medal, Yuddha Seva Medal, Vayu Sena Medal, Seva Nivritt.
2: Air Marshal Sunil Kashinath Vidhate, Ati Vishisht Seva Medal, Yuddha Sena Medal and Vayu Medal, retired, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: Bharatiya Vayu Sena mein rehkar aapne bahut udane bhari hai, Air Marshal Sunil Kashinath Vidhate, Ati Vishisht Seva Medal, Yuddha Seva Medal, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल
2: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट
0: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल
1: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल
2: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल
0: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं
1: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान अति विशिष्ट सेवा मेडल
2: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान अर्लियर रिसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल इज नाउ रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के कर कमलों से मेडल प्राप्त करने के बाद उन्हें सैल्यूट करते हुए
1: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल
2: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना

0: Medal from the Regiment of Artillery, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
1: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल रूपेश मेहता की बारी है अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल ग्रहण करने की। आप विशिष्ट सेवा मेडल से पहले ही अलंकृत हो चुके हैं।
2: अब सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा PVSM AVSM CM फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड।
1: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं। प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा
2: मेडल। एयर मार्शल नगेश कपूर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
0: Air Marshal Nagesh Kapoor, PVSM, AVSM, VM, Flying Pilot, receiving the Sarvottam Yudh Seva Medal.
1: Sarvottam Yudh Seva Medal प्राप्त करने की बारी अब है भारतीय वायु सेना के अधिकारी Air Marshal Nagesh Kapoor की परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। आप Flying Pilot हैं भारतीय वायु सेना की।
2: Lieutenant General Rajiv Ghai उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार।
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, UISM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी।
1: कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी विशिष्ट सेवाएं दी आपने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
0: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेना मेडल, वायु सेना मेडल फ्रॉम फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: भारतीय वायु सेना के एक और उत्कृष्ट अधिकारी पायलट एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और अपने
2: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवा निवृत्त।
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह PVSM AVSM NM रिटायर्ड।
1: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
2: एयर मार्शल दी थी। नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, सेवा निवृत्त।
0: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना के एक उत्कृष्ट अधिकारी और पायलट एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा निवृत्त।
0: The next recipient of Sarvottam Yudh Seva Medal is Air Marshal Jitendra Mishra, AVSM, VSM, Flying Pilot, retired.
1: भारतीय वायुसेना के एक और पायलट रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को। और इसी के साथ आज के जो रक्षा अलंकरण थे उनका समापन होता हुआ रक्षा सचिव राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए।
3: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
1: माननीय राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी।

रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण यह था, जिसमें विशिष्ट सेवा पुरस्कार आज सशस्त्र सेनाओं के विशिष्ट अधिकारियों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति जी अब गणतंत्र मंडप से सबका अभिवादन करते हुए धीरे धीरे बाहर जाती, उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और उनके ठीक पीछे अन्य अधिकारी। और ये बता दें कि आज 105 अधिकारियों को ये विशिष्ट अलंकरण यहाँ पर प्रदान किए गए, जिसका आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी के जरिए सुन रहे थे।

0: As this solemn ceremony draws to a close, let us offer our deepest respect to all the awardees and their families. May we always remember that the spirit of duty that drives our armed forces. I, Lipika Das, along with my co-commentator, Mahindra Singh Lales, OB in charge, Prabha Kumar, with our technical team, Ashok Kumar Mishra, Sumit Katiyar, Hemraj Meena, and producer, Pramod Kumar, take you back to the studios of Akashvani.
1: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे महेंद्र लालस और लिपिका दास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: சர்வகாரேண ஜனவிஸ்வாச உபபந்தானாம் சம்சோதனம் இத்யதிநியம விம்சதி ஷட்விம்சதி இத்யஸ்ய மாத்யமேன விதிமாபன அதிநியம நவோத்தர த்விசஹஸ்ர இத்யஸ்யாந்தர்கதம் பரிஷ்கார சூச்சனா வ்யவஸ்தா பிரவர்த்திதா பவிஷ்யதி இதி. दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे एसआईआर इत्युक्ते मतदातृणां विशेष गहन पुनरीक्षण इति अभियानांतर्गतं मतदातृभ्यः निर्वाचक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृह वितरणाभियानं स्वस्तनादारप्स्यते. देहलीनगरस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः अद्य नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् एतत् अघोषयत् यत् मतदान केन्द्रस्तरीय बीएलओ इत्याख्याः अधिकारिणः स्वस्तनादारभ्य अग्रिममासस्य नवविंशति दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यमिदं सम्पादयिष्यन्ति इति. श्रीकुमारः अवदत् यत् अगस्तमासस्य पञ्चमदिनाङ्कात् सितम्बरमासस्य चतुर्थदिनाङ्कपर्यन्तम् अभियोगाः आक्षेपाश्च निवेदयितुं शक्यन्ते. अन्तिमा निर्वाचकसूचिः अक्टूबरमासस्य सप्तदिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति.
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है. और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे. इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है.
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनं यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचण्डतः अतिप्रचण्ड तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति. बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे असमराज्ये मेघालये केरलम राज्ये माहे प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्. फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्. बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः यूएस ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान् इति वार्ताः.

0: Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being a Monday, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company specific queries. Well, there are numbers on which you can call us, and they are as follows: 2331-4444, 2331-0464, and 2371-7106. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke Tazank mein aapka swagat hai. Aaj Sombar hai aur aaj ke din karobari khabrein, share bazaar se jode samachar aur uske alawa arthniti se sambandhit baatcheet ke saath hum aapko aamantrit karte hain humse sawal poochne ke liye. Aap bhi samajhna chahte hain ya poochna chahte hain humse koi sawal, to nisankoch dial kijiye 2331-4444-2331-0464 या फिर 2371-7106। ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से संबंधित सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं वो देश के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवाल। दीपशिखा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका
2: स्वागत। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार लालिमा जी,
0: नमस्कार दीपशिखा, एंड अ वार्म वेलकम येट वंस अगेन टू मार्केट मंत्रा।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा।

0: जी थैंक यू मनोज. यस फ्रेंड्स लेट्स बिगिन राइट अवे. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स 372 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट. एंड इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट राइजेस बाय 5.1% इन मे दिस ईयर.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई बिकवाली. प्रमुख सूचकांक घाटे में रहे. सेंसेक्स 372 अंक फिसला. निफ्टी 24,000 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद. एशिया के अधिकांश प्रमुख शेयर बाजारों में आज तेजी दर्ज की गई और देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष मई में 5.1% बढ़ा.
0: And before we move on, here's a disclaimer for all our listener friends. Well, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां आज बिकवाली तेज रही. प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% घाटे में रहे. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 372 अंक नुकसान के साथ 76,728 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक घाटे के साथ 23,946 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.4% के आसपास घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% से अधिक की कमी आई.
0: Benchmark domestic equity indices ended almost 0.5% down today. The Sensex fell 372 points to close at 76,728. The Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index shed nearly 0.4% and the Small-Cap 100 Index declined over 0.6%. Earlier, the markets opened on a flat note and swung between gains and losses during the first half of the session. However, both indices edged lower in the latter half of the choppy trading session amid profit booking and lingering geopolitical uncertainties.
1: सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो आज 30 में से 17 कंपनियों के शेयर नुकसान में रहे. घाटा उठाने वालों में सबसे अधिक कोटक बैंक को नुकसान हुआ. इसके शेयर 3.2% से अधिक नीचे आकर बंद हुए. महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2.8% घाटे में रहे. मारुति को 2.1% का नुकसान हुआ. उधर मुनाफा कमाने वालों में प्रमुख रही एटर्नल कंपनी, जिसके शेयर 1.4% लाभ में रहे. ट्रेंट और BEL दोनों के शेयर 1.3% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए. NTPC को 1.1% का फायदा हुआ.
0: In the sectoral indices on the BSE, 18 out of 25 sectors ended in negative zone. Among the key decliners, auto fell 2.1%, focused IT lost over 1.5%, and oil and gas slipped 1.4%. In contrast, healthcare gained nearly 1%. Mid-small private banks quality tilt index added 0.6%, and metal rose over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,629 companies declined, 1,712 advanced, and 218 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर हुआ. 94.54 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.24 पर चल रहा था.
0: एंड नाउ वी हैव ऑनलाइन अनिल कॉलिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद. जी अनिल जी, सवाल पूछिए.
2: हेलो
0: जी.
2: मैम मेरा सवाल ये था कि आई एम ए सीनियर सिटीजन 64 इयर्स ओल्ड और मेरा LIC से हेलो
0: हाँ जी जी पूछिए.
2: LIC से मेरा 20 लाख आया था तो जिसको मैंने सीनियर सिटीजन स्कीम में पहली मार्च में डाल दिया था. अब मेरे एक्चुअली है क्या कि सीनियर सिटीजन स्कीम में 30 लाख डाल सकते हैं, बट आई एम हैविंग 10 लाख मोर बट इन फॉर्म ऑफ FD जो कि मेरी अराउंड 25 की है, आइदर इन PPF और 10 लाख इन म्यूचुअल फंड्स. तो मेरा ये था कि 8.2 और FD में मुझे 6.9 मिलता है, तो क्या मैं FD को ब्रेक करके सीनियर सिटीजन स्कीम में डालूं

0: Yeah, mutual fund से can I withdraw my money for the 10 lakhs or PPF? Though I am still earning and I have decent income per month and no liabilities, nothing. So please tell me.
1: अनिल जी, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपने पोर्टफोलियो में वो किस तरह का कर रखा है, जो आपका टोटल सेविंग्स है या जो इन्वेस्टमेंट्स है मार्केट में. तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अगर आप रखेंगे सब कुछ मिला करके तो वो आपके लिए बेहतर होगा. दूसरा, जो आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आपका क्या ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप अपना स्टैगर कर सकते हैं. दूसरा चीज़ है कि जो सेविंग स्कीम्स हैं सरकार के, उनमें थोड़ा बेहतर आपको रिटर्न मिलता है और उनमें टैक्स सेविंग भी मिलती है. उसके अलावा भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं जहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलें.
2: हमारे साथ दिल्ली से ही एक श्रोता हैं, हम आग्रह करेंगे पहले अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे सवाल समझना चाहेंगे आपका. अपना नाम बता दें. अनस जी हैं. हेलो.
3: हेलो
2: जी, अपना नाम बता दें फिर उसके बाद सवाल पूछें.
3: मेरा नाम अनस है जी. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू.
1: जी गुड इवनिंग.
2: बहुत बहुत स्वागत आपका अनस जी, सवाल पूछें.
3: व्हाई आर आईटी एंड एनर्जी सेक्टर सफरिंग फ्रॉम प्रेशर?
1: अनस जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी भी उसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है. हमें पता नहीं है कि, हालांकि एक समझौता हुआ है, लेकिन अभी भी जो है ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ही ड्यूरेबल समझौता है वो. तो वो एक प्रेशर है जो हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस क्षेत्र में. और आईटी क्षेत्र में कुछ समय से ये चल रहा है प्रेशर, और ये प्रेशर जो है क्योंकि एआई का जो असर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका कंपनीज़ के ऊपर, ख़ास तौर से टेक कंपनीज़ के ऊपर जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं हैं ट्रेडिशनली यूएस मार्केट्स को लेकर के, तो वो उनका बिजनेस जो है किस हद तक असर कर पाएगा, वो एआई में कितना अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं. तो इस सब का मिला जुला प्रभाव है जो टेक स्टॉक्स पर दिखाई दे रहा है.
4: ऑलराइट, वी नाउ हैव शोभित ऑनलाइन कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली. यस शोभित जी, जी सवाल पूछे.
5: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र.
4: गुड इवनिंग जी.
5: एंड माय क्वेश्चन इज दैट आई एम हेविली bought on FMCG and good tech companies. Even the FMCG I'm holding are the premier companies. But in the last 5 years, I've seen no growth, rather negative returns. Though I get good dividends, but the return is negative. And as you know, IT stocks are also seeing a lot of beating. So what should be my strategy from here on for maybe another couple of years? Thank you.
1: शोभित जी, एक जो पोर्टफोलियो में आपको देखना चाहिए कि आप अगेन आपने चर्न कितना आप कर पा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का. जैसा कि आपने कहा कि आपने ब्लू चिप जो टॉप कंपनीज हैं उनमें निवेश किया हुआ है, तो निवेश इस हिसाब से उनमें आपको डिविडेंड तो ज़रूर दिया गया होगा. और बाज़ार में हालांकि रिटर्न अगर आपका फ्लैट रहा है, आप कुछ समय और उसको देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है अभी इन कंपनीज पर आए. लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है, उस लिहाज से ये कंपनीज जो हैं आगे जाके बेहतर ये क्षेत्र कर सकता है.
2: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राजीव. राजीव जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
6: मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या कहते हैं आईटी सेक्टर में सुधार आएगा अभी या नहीं. और एक दूसरा सवाल मेरा, जैसे आज सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा कम गिरा है मगर मेरे अकाउंट में बहुत असर पड़ा है.
1: राजीव जी, देखिए आईटी और टेक क्षेत्र में कुछ समय तक अनिश्चितता बनी रहेगी जब तक कि बहुत क्लैरिटी नहीं हो जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह का

0: असर जो है हमारी टेक कंपनीज पर आएगा, वो खुद एआई के क्षेत्र में क्या कर सकती हैं और कितना वो काम बढ़ा रही हैं। तो ये अभी दुनिया में हम देख रहे हैं कि टेक क्षेत्र में, बाकी भी बाज़ार अगर आप देखेंगे कोरिया, ताइवान, वहाँ पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। तो कुछ समय तक ये थोड़ा सा रहेगा उतार चढ़ाव।
1: All right, we are now joined by Jitendra, and Jitendra ji is calling us from, we have Ranjay. Ranjay ji is calling us from Faridabad. Ji, sawal puchhiye. Haan ji.
2: Hi, I'm new in this, so I'm a student right now. Uh-huh. I have 1 lakh in my bank account, so where should I invest it?
0: Ranjay, welcome to the program, and for you as an investor, you are a young investor, you have more risk taking capability, so you can look at equities, you can look at making some interesting bets in the market, some of the sectors which show promise of the future. You have defense, you have infrastructure, you have capital goods, which are typically long term stocks which can get you good returns in the long term when you will require funds.
3: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमित। अमित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार सभी को।
3: नमस्ते।
0: नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते अमित जी।
4: हाँ मैडम, मेरा ये प्रश्न था, जब यूएस और ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ था मैम, तो क्रूड ऑयल की कीमत $72 बैरल की समथिंग चल रही थी अराउंड, ठीक है मैम
0: जी।
4: और एकदम से वो पीक आ गई थी मार्च के महीने में, $120 तक चली गई थी, ठीक है मैम। तो उस दौरान जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की शेयर की जो प्राइस थी एकदम से डाउन हो गई थी, लाइक 20-30% तक। बट अब दोबारा से $120 से क्रूड ऑयल 72 के अराउंड में ही आ गई है, तो ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज के शेयर हैं उनमें कुछ खास क्या कहते हैं सुधार नहीं दिख रहा है, तो कब तक होगा मैडम? धन्यवाद।
0: देखिए अमित जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, हालांकि सुधार हो गया है, अगर आप देखें प्राइस जो है कम हुआ है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जब प्राइस पीक पे चल रहा था तो उस दौरान भी खरीदारी की थी, तो उनकी बुक्स में अभी भी वो लॉस है काफ़ी हद तक, तो वो एक ओवरहैंग है। और दूसरा चीज़, अगर आप देखें लड़ाई को लेके अभी भी अनिश्चितता सी बनी हुई है, करार हुआ है लेकिन वो थोड़ा मारामारी वहाँ चल ही रही है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर अभी इस क्षेत्र पर रहेगा कुछ समय तक।
1: राइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय जितेंद्र जी फ्रॉम जयपुर। जी सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी सर।
0: जी जितेंद्र जी,
5: मैडम हमारा दो प्रश्न है, एक तो जैसे जैसे मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी पे ओवरड्राफ्ट ले रखा है, ठीक है, किसी ने ले रखा है, तो क्या उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट से 5,000-6,000 रुपया हर एक मंथ जो है निफ्टी 50 के स्टॉक में लगाना चाहिए या एनपीएस में लगा सकता है क्या? क्योंकि तो भाई कर्जी है, कर्ज लेके लगाना तो क्या मतलब, जैसे कुछ ठीक है निफ्टी 50 बस उसी के इर्द गिर्द।
0: जितेंद्र जी, ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक एडवेंचरस स्ट्रैटेजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो हालांकि कहा यह जाता है कि कर्ज लेकर के आप बाजार में रिस्क मत लीजिए, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो हर किसी की अलग अलग होती है,
3: और ख़ास तौर से यदि उम्र बढ़ जाए और प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसके डूबने और उसका अंदेशा अधिक हो, तो ये चलन एक निश्चित आयु के बाद, 60 वर्ष से अधिक की आयु के बाद प्रॉपर्टी को लेके उस पर कुछ लोन लेकर उसको निवेश कर जोखिम उठाने की भूख देखी जाती है कुछ लोगों में। तो यदि जोखिम उठाने की क्षमता है और उस भार को वहन कर सकते हैं तो उस दिशा में बढ़ें, नहीं तो अपना घर फूंक कर बाजार में निवेश करना थोड़ा सा असुरक्षित साबित हो सकता है।
0: बिल्कुल, मतलब आपकी क्षमता है रिस्क लेने
3: जी,
0: की
3: जी,
0: तो
3: जी।
0: जिगर बड़ा है तो
3: कीजिए। आइए चले मुंबई, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे नियमित श्रोता रत्नाकर, स्वागत आपका, सवाल पूछें।
6: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग रत्नाकर जी,
6: मेरा सवाल है कि ये जो हम इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं
0: जी,
6: तभी वो हम 26A रेफर करते हैं, तो 26A रेफर करना ही ठीक है कि उसके साथ वो AIS और TIS का भी हमने मैचिंग करना चाहिए? और मैचिंग करना है तो एग्जैक्ट उसमें AIS और TIS से 26A में क्या देखना चाहिए, इसके बारे

0: में थोड़ा मार्गदर्शन।
1: देखिए, जब आप आईटीआर भर रहे हैं रत्नाकर जी, तो आपको ये देखना होगा कि आपने कहाँ आपका पेमेंट कहाँ कहाँ से आया है और कहाँ आपका टीडीएस कटा है या कहीं आपकी कोई लायबिलिटी है वो तो नहीं है। तो जब आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप तो जानते हैं जो आप सवाल कर रहे हैं, उसमें अगर आप रिटर्न में अपना आपका रिफंड बन रहा है या नहीं बन रहा है, आजकल प्रीफिल्ड रिटर्न्स आ जाते हैं अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसमें आपको अपनी जो भी आपका टीडीएस कटा है वो आपको नज़र आ जाएगा, तो वो आपको टैली करना होता है, तो वो आप सही टैली करके उसको फिर भरिए।
2: हमारे साथ कई श्रोता फोनलाइन पर हैं, खासतौर से मुंबई से के शुक्ला और नोएडा से पंकज। आप दोनों से आग्रह कि हमारे साथ फोनलाइन पर बने रहें। हम कुछ खबरें, क्योंकि समय भी है और आपके सवाल भी लगातार आ रहे हैं, तो खबरों का संतुलन

0: सही टैली करके उसको फिर भरिए।
1: हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं, खासतौर से मुंबई से के शुक्ला और नोएडा से पंकज। आप दोनों से आग्रह कि हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। हम कुछ खबरें, क्योंकि समय भी है और आपके सवाल भी लगातार आ रहे हैं, तो खबरों का संतुलन और आपके सवालों का संतुलन बना के पहले हम आपको एशियाई बाजार लिए चलते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। एशियाई शेयर बाजारों में आज कुल मिलाकर तेजी रही है। हांगकांग का हैंगसेंग 1.6%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.2%, ताइवान का ताइएक्स लगभग 1% ऊपर आकर बंद हुए। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.1% से अधिक की तेज आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.3% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। उधर दक्षिण कोरिया का कोस्पी बिकवाली के दबाव में 0.2% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय जोन में समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख था। प्रमुख शेयर बाजार में सम्मिलित फ्रांस के कैक 40 में 0.3% की गिरावट थी। लंदन का फुटसी 100 0.2% से अधिक ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में भी 0.1% की वृद्धि थी। और अब नोएडा से पंकज, बहुत बहुत धैर्य के लिए आपका, आपकी सराहना हम करते हैं, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद, आपकी सारी टीम को हमारी तरफ से नमस्कार।
3: नमस्कार पंकज जी।
2: मैं मैडम ये पूछना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में इंडियन मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर में कितना परसेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और फॉरन के हैं विदेश के, उनका परसेंटेज क्या है, और आने वाले समय में हमारा परसेंटेज तो फिर बढ़िया ही होता जा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं मैडम।
0: पंकज जी देखिए, कुछ समय पहले ऐसा होता था कि ये कहा जाता था बाजार में कि अगर अमेरिका को छींक आई तो बाकी सबको सर्दी लग जाती थी, तो ये काफ़ी हद तक हमारा जो मार्केट है वहाँ पे डोमेस्टिक जो निवेशक हैं उन्होंने काफ़ी हद तक अपना निवेश बढ़ाया है, और हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि FPIs जो है वो पुल आउट कर रहे थे अपना निवेश। नेट जो है वो नेगेटिव में चल रहा था, जो अभी चल रहा है, लेकिन हालांकि थोड़ा सा फ्लोज जो है वो आना शुरू हुआ है, लेकिन पुल वो अभी भी कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस जो हैं AI को लेकर के वहाँ पे पैसा IPOs आ रहे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे वो पैसा लगाना चाह रहे हैं। दूसरा US ट्रेजरीज का अगर आप देखें तो यील्ड्स बहुत बड़ा है, तो यहाँ से हमारे बाजार से पैसा काफ़ी विड्रॉ हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दोनों मिक्स रहेगा, देश के भी निवेशक रहेंगे और विदेश के भी निवेशक रहेंगे, तभी तो हमारा शेयर बाजार मजबूत रहेगा।
4: राइट, वी नाउ जॉइन बाय KK शुक्ला जी फ्रॉम महाराष्ट्र। जी सवाल पूछे।
5: नमस्कार।
0: नमस्कार शुक्ला जी।
5: KK शुक्ला बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। मेरा क्वेश्चन था कि क्रूड ऑयल और गोल्ड और फर्टिलाइजर, ये तीनों हम अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं भारत से, क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, और डॉलर या अदर करेंसी कैसे मिलता है, और सेकंड क्या गोल्ड का रेट डॉलर या डॉलर के थ्रू यहाँ क्लियर होता है क्या?
0: शुक्ला जी देखिए, हम काफ़ी हद तक आपने जो बताया कच्चा तेल, सोना और फर्टिलाइज़र खाद जो है, इसके लिए आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं, और हम सोना जो है जो निर्यात जो करते हैं, हम ज्वेलरी निर्यात करते हैं बनने के बाद में, कच्चे तेल में भी हम उसको लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और फिर हम निर्यात जो होता है रिफाइंड प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है। फर्टिलाइज़र में अभी निर्यात थोड़ा सा लिमिटेड है, क्यों, हमारी अपनी खपत बहुत ज़्यादा है, और सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि फर्टिलाइज़र में भी हम आत्मनिर्भर बने, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है सरकार का, तो इस पर काम किया जा रहा है। तो ये जब उतार चढ़ाव होता है और आयात का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, अगर आप देखें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है या BOP हमारा बैलेंस जो है वो नेगेटिव जा रहा है, तो उसका प्रेशर जो है वो करेंसी पर आता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है अपने आप में डॉलर में खुद जो है अप्रिसिएशन था, जिसका असर विश्व की बहुत सारी करेंसीज पर हुआ, हमारे देश की करेंसी पर भी हुआ।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP पर आधारित यह वृद्धि दर अप्रैल में 4.9% दर्ज हुई थी। गौरतलब है कि सरकार ने औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर को मापने के लिए वर्ष

0: 2022-23 को नए आधार वर्ष के रूप में संशोधित किया गया है। नए संशोधित सीरीज में एक अद्यतन उत्पाद बास्केट को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विभिन्न उत्पादों को आवश्यकता अनुसार महत्व देते हुए व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते मई के दौरान बिजली और गैस आपूर्ति उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि दर 9.9% दर्ज हुई। वे निर्माण के साथ जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में 5.5% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि में खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1.6% की गिरावट दर्ज हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मई के आंकड़ों का ब्यौरा देते हुए कहा कि आधार वर्ष के रूप में 2022-23 के साथ नई आईआईपी श्रृंखला के लिए डिफ्लेटर के रूप में आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के साथ थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI को बदल दिया गया है। मंत्रालय ने इस महीने की पहली तारीख को जारी WPI आधारित श्रृंखला का स्थान लेते हुए आउटपुट PPI का उपयोग करके संपूर्ण 2022-23 आधारित IIP श्रृंखला को संशोधित किया है। यहाँ पर यानी कई सवाल, पहला सवाल तो ये कह लें कि ये जो नया आधार वर्ष बदला गया उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहे। दूसरा, डिफ्लेटर के रूप में जो एक नया फैक्टर जोड़ा गया है WPI को हटाकर, उसका क्या औचित्य है। और तीसरा कि कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं मई के वो क्या दर्शा रहे हैं।
1: मैं पहले सवाल से शुरू करती हूँ जो आपने कहा।
0: हाँ, ऐसा जवाब से पहले मोहन जी आप हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आप लाइन पर बने रहें, पहले इस सवाल का जवाब, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें
1: जी। देखिए, तो आखिरी सवाल जो था आपका कि इस महीने का जो है जो परफॉर्मेंस है मई महीने का वो कैसा रहा, तो ये अगर कहना चाहिए थोड़ा सा मॉडरेशन है
0: जी।
1: लेकिन परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल देखा जाए तो वो ठीक है। अगर आप देखें खासतौर से अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें जिसमें मॉडरेशन है
0: जी,
1: IIP ओवरऑल जो है अप्रैल में 4.9 था, तो उससे तो इम्प्रूवमेंट आया है। जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मॉडरेशन भी जो है वो बहुत लिमिटेड है मॉडरेशन
0: जी, जी।
1: तो ओवरऑल अगर असेसमेंट देखें तो ये कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में अभी इस समय ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा असर वेस्ट एशिया का दिखेगा, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी हुई है
0: जी, जी।
1: कुछ उन क्षेत्रों को हम छोड़ दें तो ये जो आंकड़ा है ये अर्थव्यवस्था की जो गति है, उम्मीद की जाती है कि आगे भी खासतौर से FMCG कंज्यूमर सेगमेंट्स जो हैं एलनीनो की वजह से आशंका है कि उन पर शायद असर पड़े, तो वो असर ना रहे। आपने कहा कि ये जो नए PPI डिफ्लेटर और ये सब जो लाए गए हैं ये बेसिकली इसलिए लाए गए हैं कि हमारा डेटा जो है उसे और रोबस्ट किया जाए।
0: जी, जी।
1: असल में प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको क्या असर होता है इन्फ्लेशन का, उनका आंकड़ा ले करके उसको इस्तेमाल किया
0: जी,
1: जाए
0: जी। मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत, धैर्य के साथ आप बने हुए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद और स्वागत। सवाल पूछें।
2: थैंक यू सर, आप सभी टीमों के सादर प्रणाम।
3: प्रणाम
1: प्रणाम मोहन जी।
2: जी मुझे जानकारी, मैं अभी नए अभी स्टॉक मार्केट में मैं इंट्राडे करता हूं मैम। मुझे जो है इंडेक्स, ऑप्शन, फ्यूचर, इसमें डिफरेंट क्या है ये मुझे इसके विषय में जानना चाहिए था।
1: मोहन जी, आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स का जो एक वो है उसके लिए एक बहुत लंबा प्रेजेंटेशन लगेगा, लेकिन चूंकि आपने ये कहा कि आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, आपने निवेश अभी ही करना शुरू किया है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है ये इसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट होने की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत रिस्क हैं इस मार्केट में, आपने देखा है कि सेबी ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ी कॉशन किया है, तो बहुत ध्यान से इस क्षेत्र में घुसिए।
0: यानी इंट्राडे ट्रेडिंग खतरे से खाली नहीं है, और नए हैं तो उससे बचें, ये सीधी सलाह।
3: Well, Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, effectively shielded the energy consumers from any negative impact, even as the world faced one of the worst energy crises and disrupted supply chains.
0: Or a commodity market.
3: Global crude oil prices rose.

0: News today, Brent crude was trading 0.8% up at $72.58 per barrel.
1: नजर डालते हैं सर्राफा बाजार पर. भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 1,43,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.6% घटकर 2,22,400 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी. एमसीएक्स पर भी अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% घटकर 1,42,755 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.6% से अधिक घटकर 2,22,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. और बहुत संक्षेप में सोना ऊपर जाता दिख रहा, नीचे आता दिख रहा. बहुत संक्षेप में
2: अनिश्चितता बनी हुई है और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो खरीदी बरकरार रखे हुए हैं, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि अनिश्चितता के रहते बढ़ेगा.
1: बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: राइट, थैंक यू दीपशिका फॉर ऑल योर व्यूज एंड रिव्यूज. फ्रेंड्स, बिफोर वी वाइंड अप, हियर इज अ लुक एट द हेडलाइंस वंस अगेन. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स 372 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस end on a positive note, and India's industrial output rises by 5.1% in May this year. Well friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pashak signing off for now. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षेण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ

0: प्रदान किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सूलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu presented the gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney, Lieutenant General Vikas Rohela, Lieutenant General Harbinder Singh Vandra and Lieutenant General Mohinder Pal Singh were awarded Ati Vishisht Seva Medal. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of the armed forces were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said his visit to Seychelles has been full of substantive outcomes that will boost India-Seychelles friendship. In a social media post, the Prime Minister said, during the past 50 years, the relationship between the two countries has been marked by deep trust and shared progress. Well, the next 50 years will be defined by innovation, sustainability and shared prosperity. He also expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, the government and the people of Seychelles for their affection. India's industrial output growth as measured by the Index of Industrial Production, IIP, expanded by 5.1% in May this year on an annual basis. As per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, growth in the electricity and gas supply sector expanded by 9.9% in the last month. Manufacturing as well as water supply, sewerage and waste management sectors posted a 5.5% growth. However, the mining and quarrying sector proved to be a laggard, decelerating by 1.6%. Along with the May IIP data, the Ministry has replaced the Wholesale Price Index with the Output Producer Price Index as a deflator for the new IIP series, with 2022-23 as a base year. Union Minister of Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda today said the government has significantly strengthened the country's healthcare system by expanding primary, secondary and tertiary healthcare services. Mr. Nadda launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi. Addressing the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi, Mr. Nadda said 1.86 lakh Ayushman Arogya Mandirs have been established as the first point of contact between citizens and the healthcare system.
2: Applications launch is going to play a very important role. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many new initiatives have taken place in the past 12 years. The National Health Authority and PM Jai Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has expanded the health facility

0: தொடரும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லீன் நிகம். राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णे, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का बुधवार को अनंतपुरम स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। भारत और सऊदी अरब ने जेद्दाह में आयोजित सऊदी जल सप्ताह के दौरान जल संसाधनों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ सुहेल खान और सऊदी अरब के पर्यावरण, जल तथा कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसेन अल फदली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल डमरू मध्य के नियंत्रण और समुद्री प्रबंधन को लेकर नवगठित संयुक्त होर्मुज समिति की पहली बैठक मस्कत में आयोजित की गई। बैठक में ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी और ओमान के विदेश

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி தொகுப்புகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री

मंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों

0: जन व्यवस्था रख रखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण

0: रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो MSME की है वो, जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट MSMEs हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ MSMEs के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें MSME का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज़्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं

0: रिसीव करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है, इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
1: जी
2: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
1: जी।
2: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है।
2: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
2: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है, तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
2: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला, ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
2: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपये है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115

0: 15 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज़ निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है। तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेने का तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर आप प्रोसेसिंग में हैं तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम

0: पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा
1: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
1: जी।
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
0: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमईज इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमईज के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा
1: जी। हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
3: मैम। मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग है जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
0: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 एमएसएमईज हमारे साथ पंजीकृत थे। और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमईज जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट हैं, और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफ़ॉल्ट है, वो पेमेंट डिफ़ॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफ़ॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है।

इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन

0: जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया
1: और
0: जाता
1: अगर
0: है।
1: कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी
0: वो भी काफ़ी सख्त है।
1: जी
0: तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये
1: जी
0: 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: जी हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: है। जी मैडम जी नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार। हाँ
0: नमस्कार।
2: जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेजेस इनमें एमएसएमई में कितने निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर किस स्कीम के बारे में बताइए, किसके जो मजदूर काम करते हैं एमएसएमई, और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज़ डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी
1: जी
0: होती
1: होते
0: हैं।
1: रहे जी।
0: तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड हैं आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा, मंत्रालय के पास हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे
1: जी
0: रूप में
1: जी
0: आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफ़ी स्टेट्स ने
1: जी
0: अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: जी हाँ। अब एक और श्रोता लेते हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
1: जी
3: नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछें।
3: कि जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1 करोड़ 65 लाख से अब 8 करोड़ 70 लाख से ऊपर हुए हैं, और हमारे एमएसएमईज जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और

0: के विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं।
1: जी
0: अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है।
1: जी।
0: और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा
1: जी
0: हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज़ है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1-800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
2: हेलो।
1: जी हाँ, अपना सवाल
2: हाँ
1: पूछें।
2: हाँ नमस्ते मैडम।
1: जी
2: हेलो।
1: जी हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
2: अच्छा, एक्चुअली में हमारा ना बुटीक है
1: जी
2: सिलाई का, तो उसमें हमारे पे 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है
0: बिल्कुल, आपको लोन मिल सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है,
1: जी
0: इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं। तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर
1: जी
0: सकें, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं? रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलेंट्री है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं
1: जी
0: और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहाँ पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना
0: जी
1: शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके
1: जी
0: हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को 15,000 रुपये का टूलकिट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो ये एक ब्रॉड मैंने आपको
1: जी जी
0: जानकारी।
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं MSME। डॉक्टर रजनीश, आप

0: आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
3: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रख रखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का बुधवार को अनंतपुरम स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कल रात अफगानिस्तान सीमा के पास हवाई हमले किए। इनमें पक्तिका और कुनार प्रांतों के इलाकों को निशाना बनाया गया। अफगान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिक मारे गए और 163 अन्य घायल हो गए। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन

0: Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The Met Department further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष की साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से आगे बढ़ेगी। श्री मोदी द्वीपीय देश की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटे। अमरीका और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमला रोकने की सहमति के बाद संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी यात्री उड़ानें फिर शुरू। पाकिस्तानी हवाई हमले में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए, भारत ने पाकिस्तानी हमले की कड़ी निंदा की। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कई देशों में तापमान का नया रिकॉर्ड दर्ज। और अब से थोड़ी देर में फीफा विश्व कप में अमरीका के ह्यूस्टन में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील का सामना जापान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनय नगर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करें। श्री मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 वर्ष की साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से आगे बढ़ेगी। श्री मोदी द्वीपीय देश की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी यात्री उड़ान सेवाएं फिर शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बीच 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। उड़ान संचालन अभी सीमित है और सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं। ईरान का इमाम खमेनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9 जून को फिर खुल गया, जिसके बाद कई एयरलाइंस चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान संचालित कर रही हैं। इसराइली रक्षा बल IDF ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के 3 कमान केंद्रों पर हमले किए हैं। उसने इसे हिजबुल्ला के युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के जवाब में उठाया गया कदम बताया। एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पोस्ट में IDF ने कहा कि उसके बलों ने दक्षिणी लेबनान के नबातीह और मायफादौन क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के 3 कमान केंद्रों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने एक लॉन्चर पर भी हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कथित तौर पर इसराइली बलों पर हमले करने के लिए कर रहा था। IDF ने कहा कि उसने दक्षिण पश्चिम लेबनान में हिजबुल्लाह की एक भूमिगत सुरंग को भी नष्ट कर दिया है। इस 200 मीटर से अधिक लंबी और 50 मीटर गहरी सुरंग में सैकड़ों हथियार और कई लॉन्च शाफ्ट थे, जिसका कथित तौर पर इसराइल के नागरिकों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। शुक्रवार को इसराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच झड़प की घटनाएं जारी हैं। शनिवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये समझौता संघर्ष समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है और दोनों देशों के बीच शांति समझौते का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 36 आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। ये पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और अपनी अंदरूनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीमा पार हिंसा जैसी हताशापूर्ण हरकतों के उसके व्यर्थ प्रयास दिखाता है। भारत ने पाकिस्तानी हमलों में अपने प्रियजनों को खोने वाले अफगान परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की संप्रभुता और

0: क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना अटूट समर्थन दोहराया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्री ने आज कहा कि इस तरह की बातचीत ना तो नई है और ना ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। विदेश सचिव ने कहा कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, इस तरह के आयोजनों में उसकी कोई आधिकारिक भागीदारी, समर्थन या संलिप्तता नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। यूरोप में 19 करोड़ से अधिक लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट।
1: इटली में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट वाले शहरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड और हंगरी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। फ्रांस और जर्मनी में ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पेरिस में भी हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 21 जून से यूरोप में 1,300 से अधिक मृत्यु भीषण गर्मी से हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियसिस ने कहा कि यूरोप अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जहां तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: इस बीच दुबई सरकार ने गर्मियों के लिए आवर फ्लेक्सिबल समर नाम की नई योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब उन्हें हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: दुबई सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई ये पहल 29 जून से 10 सितंबर 2026 तक चलेगी और इसमें दो तरह के कार्य व्यवस्था पेश किए गए हैं, जो कर्मचारियों की जरूरतों और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पहली व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी सोमवार से गुरुवार तक प्रतिदिन 7 घंटे और शुक्रवार को 4.5 घंटे काम करेंगे। दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत सोमवार से गुरुवार तक 8 घंटे काम करने की अनुमति है। इसमें शुक्रवार को अवकाश का दिन निर्धारित किया गया है, जिससे कर्मचारियों को प्रभावी रूप से 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। दुबई सरकार के मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक अब्दुल्ला अली बिन जायद अल फलासी ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण और जीवन की गुणवत्ता प्रदर्शन की कीमत पर नहीं आती, बल्कि इसके विपरीत ये संस्थागत सफलता और दीर्घकालिक स्थिरता के प्रमुख कारकों में से है। ये पहल संयुक्त अरब अमीरात के परिवार वर्ष के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो सरकारी सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए पेशेवर, पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के बीच स्वस्थ संतुलन का समर्थन करती है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
0: भारत और सऊदी अरब ने जेद्दाह में आयोजित सऊदी जल सप्ताह के दौरान जल संसाधनों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सोहेल खान और सऊदी अरब के पर्यावरण, जल तथा कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन अल फदली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। कनाडा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार विश्व कप के अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष की साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से आगे बढ़ेगी। श्री मोदी द्वीपीय देश की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटे। अमरीका और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमला रोकने की सहमति के बाद संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी यात्री उड़ानें फिर शुरू। पाकिस्तानी हवाई हमले में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए। भारत ने पाकिस्तानी हमले की कड़ी निंदा की। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कई देशों में तापमान का नया रिकॉर्ड दर्ज और अब से थोड़ी देर में फीफा विश्व कप में अमेरिका के ह्यूस्टन में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी

0: के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं।

0: मैं शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में टेक्सास में ब्राजील और जापान के बीच कांटे का मुकाबला जारी है। मैच में जापान ने 1 गोल की शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन हाफ टाइम के बाद ब्राजील ने बराबरी का गोल दागकर मैच में अभी 1-1 गोल की बराबरी कर ली है। इस नॉकआउट मुकाबले में पराजित होने वाली टीम विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्र

स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि यह समिति शादी, तलाक और गोद लेने जैसे कुल 9 विषयों पर अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच देर रात 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேரில் இன்னும் சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान कानून के पालन के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार संहिता तैयार करेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत

0: ने कहा है कि कानून का शासन ना तो कोई कल्याणकारी योजना है और ना ही कोई आर्थिक नीति है, बल्कि ये सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार ना बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने मुख्य संबोधन में ये बात कही। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच खतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि खतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishish Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishish Seva Medals at the ceremony. The medals are awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of the armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyse institutional capital into the country. The Ministry of Women and Child Development convened the 3rd preparatory meeting of the BRICS Women Track under India's BRICS chairship virtually in New Delhi yesterday. The meeting focused on advancing discussions on the priority areas and the key outcomes, including the digital repository of best practices and the BRICS Women's Capacity Building Guidelines. During the event, BRICS member countries shared their valuable inputs and reaffirmed their commitment to collaborative and consensus-based outcomes. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi yesterday. The launch included

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் முதல் மரியாதை மற்றும் கடலோரக் கவிதைகள் ஆகிய திரைப்படங்களிலிருந்து ஒரு சில பாடல்கள் வந்து சென்றன. பண்பலையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए. हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं.
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए. अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं. सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं. परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं. उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं. ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं. सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं. उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की. प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. श्री अधिकारी ने कहा कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी. राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है.

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से दो दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक मुकाबले में पैराग्वे 1-0 से आगे है, वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the phase 2nd of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals were awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. The West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for antisocial activities which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. The Maintenance of Public Order Amendment Bill, the original Act of 1972, has been amended with the objective to impose payment of compensation on individuals committing arson, vandalism and damage to public and private properties. The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved the nearly 3-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to the Rajasthan through these underground pipelines from the next month to October. The Ministry of Women and Child Development convened the 3rd preparatory meeting on the BRICS Women Track under India's BRICS chairship virtually in New Delhi yesterday. The meeting focused on advancing discussions on the priority areas and key outcomes, including the digital repository of best practices and the BRICS Women's

0: பண்பையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मी द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश

0: ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது பொங்கும் மங்களம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தர்மபுரி டிஎம் ஜெயராமன் அவர்களின் நாகஸ்வர இசையும், செம்புலிவனம் எஸ் ஜி தீனதயாளன் அவர்களின் தவிலிசையும் கேட்டு மகிழ்ந்தோம். பண்பலைகள் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल के समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का भी दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं